एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 जुलाई सन 2026। श्रोता, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का सादर वंदे।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत

0: युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: आज के आपाधापी वाले दौर में किसी से पूछो, क्या आप समय निकालकर प्रभु का ध्यान करते हैं? जवाब आएगा, समय ही नहीं मिलता। एक बोध कथा है कि एक सेठ जी का सारा समय दौलत कमाने में निकल जाता था। एक बार उनके घर एक धर्म गुरु पधारे। उन्होंने कहा, सेठ जी, जीवन बड़ा ही अनमोल है और क्षण भंगुर भी, इसलिए ध्यान के लिए भी समय निकालें। सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी, मन तो बड़ा करता है, पर क्या करूं, मेरा लड़का अभी कुछ छोटा है, वह अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से चलाने लगे, बस 2-3 साल और मेहनत कर लूं, उसके बाद तो समय ही समय है, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। धर्मगुरु ने मुस्कान फेंकी, तुम कैसे तय कर सकते हो कि तुम्हारे पास 2-3 साल का समय है? ईश्वर के विधान को तुम कैसे समझ सकते हो? खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। धर्मगुरु चले गए। सेठ जी व्यवसाय में मगन हो गए। उन्हें अपने स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी, इसलिए प्रतिदिन सुबह थोड़ा थोड़ा पैदल घूम लेते थे। एक दिन टहल रहे थे कि एक ट्रक ने चपेट में ले लिया और वे परलोक सिधार गए। अंतिम समय में उन्हें गुरुजी का कथन याद आ रहा था, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। समय हमें निकालना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। जीवन भर हमें अच्छे कामों के लिए समय नहीं मिल सकेगा और हम अपने ही राग रंग में डूबे रहेंगे। प्रभु भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप घंटों भक्ति में डूबे रहें और सारा कामकाज छोड़ दें। हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि अपनी दिनचर्या में अपने अपने ईश्वर को ध्यानस्थ होकर याद करें, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो या पारसी। अगर अपने प्रभु का ध्यान करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि हम उनके ही दिव्य गुणों से जुड़ते चले जाते हैं। मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, हमारा मन निरंतर निर्मल होता चला जाता है। हम ध्यानस्थ होकर सदाचारी मानव बनकर विश्व कल्याण की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। ध्यान योग है, इससे जुड़ने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और आत्मा भी शक्तिशाली बनी रहती है, चरित्र भी मजबूत होगा। इसलिए समय निकालकर कुछ पल बैठकर हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, हम आत्ममंथन भी करते रहते हैं। तो चलिए आज की प्रातःकालीन शुभ घड़ी में ध्यान को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रण लेते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था ध्यान। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

ये भक्ति रचना आपने सुनी, गायक स्वर था हरिहरन का। श्रुतो वंदना कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। हरिओम शरण की स्वर में आपको सुनवाते हैं ये भजन।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रसाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों की जल, औषधि, मूल, फल फूल, चमर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, आपको जानकारी देते हैं हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर, 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:45 पर आप सुन सकते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।

आदिवासी लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा 6:50 पर। कलाकार हैं हितेंद्र आचार्य और साथी। सात बजकर 20 पर आप सुन सकते हैं वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे प्रभा नगावत से वार्ता। वार्ता का विषय है संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व।

दिल की जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से का प्रसारण समय रहेगा सवेरे 8:15 पर। आज का हमारा विषय है परिवार।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में 11:30 पर और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे रात्रि 10:00। शाम 5:05 पर प्रसारित होगा हमारे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:45 पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात हमारे द्वारा सब किसान भाइयों ने नमोनों में शंकर भाई ने राम राम। किसान भाइयों, हवा हवा में टेम है, अच्छी ठंडी हवा साली रही थकी है। किसान भाइयों, आपने बात करूंगा पशुओं ने बारे में। पशु जो है अपने किसान भाइयों ने वास्ते घना अमूल्य है। इसलिए किसान भाइयों, पशुओं ने जो टीकाकरण है ये घणा आवश्यक है। पशु ने टीको लगाते ही पशु तरत सुरक्षित नहीं था। अपने पशु में जो शरीर है इन्हें एंटीबॉडी बढ़ाने ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित करवाने में लगभग 2-3 हफ्तों टेम लागे। ध्यान रखू है कि अपने मानसून जो है ये शुरू थवाने बाद टीको लगवाना तो संभव है कि तीव्र तक पशु जो है इस संक्रमण की चपेट में आवी जाए। एटले मानसून पूर्व टीको अपने ने लगवाड़ो जो पर्याप्त एंटीबॉडी आवाने में टेम लागे। बारिश में जो मौसम है अड़ में नमी ने तापमान में बदलाव था जिन्हें कारण बैक्टीरिया ने वायरस तेजी तक पैदा थे। गलघोंटू जो है ये बरसात में तेजी तक फैलवा वाली सांसनी बीमारी है ने एक टंगिया जो है इनमें मांसपेशियों में सूजन ने लंगड़ापन आई जाए। बारिश में जो मौसम है इनमें मच्छर मक्खिये ने किलनीय ने संख्या बढ़ी जाए ने आज यह है परजीवी एक बीमार पशु थकी स्वस्थ पशु तक बीमारी फैलावाने वास्ते वाहक नो काम करे। टीकाकरण जो है ई अने जोखिम ने कम करी दे। मानसून ने दौरान पशुओं ने पाचन शक्ति कमजोर थी जाए ने टीकाकरण इनने शारीरिक रूप थकी मजबूत बनाई ने राके। अगर आपने खबर है कि कोई क्षेत्र है जाखरी बीमारी में प्रकोप फैले थको है ते पसे टीकाकरण में संबंध में रिंग वैक्सीनेशन में सिद्धांत काम में ले जुए। आने विधि में ई जो क्षेत्र है ई क्षेत्र विशेष है इन्हें चारों तरफ थोड़ी दूरी में जो गांव है वे खरी टीकाकरण करूं ताकि एना गांव में पशु में जो रोग है ई न फैले ने हाथे ई जो पशु है संक्रमित इनने बाहर की तरफ जाया थे कि रोग में प्रकोप में बढ़वाने रोकवा वास्ते अपने इनमें रोको जुए। सावधानी आने घनी जरूरी है। टीको जो है ये हमेशा स्वस्थ पशु ने ही लगाड़ो जुए। यदि पशु पहले से ही बीमार है बुखार में है या तनाव में है तो इन्हें टीको ने लगाड़ो। टीकाकरण थकी लगभग 7-10 दाड़ पहले पशु ने नहीं पेट ने कीड़े ने मारवानी दवा अपने आलवी जुए। अगर पशु ने शरीर में कीड़ा होगा तो टीका में जो असर है ये सही थकी नहीं थाएगा। पशुओं में जो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं इनमें जो टीकाकरण है ये विशेषज्ञ ने द्वारा जो निर्धारित उम्र है आमतौर में 3-4 माह बाद अपने शुरू करवो जुए। टीका लगवाने बाद पशु ने 24-48 घंटे तक कोई भारी काम या पसे लंबी दूरी तक हैंडवा थी कि अपने इन्हें बचाव जुए ने अपने एक निश्चित अंतराल के बाद में बूस्टर डोज अपने जरूर आलो जुए। यदि पशु जो है ये पहले तक संक्रमित है तो इन्हें अपने टीको न लगवाओ क्योंकि टीको जो है ये शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली न तो काम करे ने बीमार पशु जो है इन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले तक ही कमजोर रहे एवं में टीको लगवा थी कि इन्हें स्थिति अजीब बगड़ी सके। कई बार पशु जो है ये देखावे में स्वस्थ देखा है पर इन्हें शरीर में वायरस जो है ये प्रवेश थाइलो रहे आवी स्थिति में टीको लगावा थकी भी पशु बीमार पड़ी सके क्योंकि टीका में जो असर है ये थावन में 15-21 दाड़ा लगे जबकि बीमारी जो है 3-5 दाड़ा में अपना असर दिखाड़ दे। एटले एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि एक सुई थकी स्वस्थ पशु

हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे आप सुन सकते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम चौपाल।

0: बीमार पशु देह में संपर्क में आएगा तो टीकाकरण में जो अभियान है ये खुद बीमारी फैलावा का जरियो बन जाएगा। तो टीकाकरण जो है उनमें काफी सावधानी रखनी है, मानसून पूर्व टीकाकरण अपने करवाणु है ताकि अपने पशु ने बचाई सके। टीएम पूरा थी गये है, शंकर भाई ने आलो इजाजत, हे आवजू, राम राम, राम राम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती में बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाइयों ने सुना पशुओं की देखभाल के विषय में सामान्य जानकारी। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आदिवासी लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे हितेंद्र आचार्य और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत हितेंद्र आचार्य और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

0: हितेंद्र आचार्य और साथी कलाकारों के गाए इस लोक भजन के साथ ही आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे प्रभा नगावत से वार्ता। वार्ता का विषय है संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व।
1: यह भारत भूमि धन्य है, जहां मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। यानी आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के विषय में। संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ व सुसंपन्न है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समक्ष उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव उसका विविध संसार के ज्ञान का आश्रय होना तथा इसकी व्यापकता किसी दृष्टि का अविषय नहीं है। महाविदों ने वह संस्कृत के भाषा ऋषियों ने इसे ईश्वर की देन बताया है। संस्कृत में 1700 धातु, 70 प्रत्यय और 80 उपसर्ग हैं। इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनकी संख्या 27,20,000 होती है। यदि दो शब्दों से बने सामासिक शब्दों को जोड़ते हैं तो उनकी संख्या लगभग 770 करोड़ हो जाती है। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। इसके सकारात्मक तरंगों के कारण ही ज्यादातर श्लोक संस्कृत में है। भारत से संस्कृत से लोगों का जुड़ाव खत्म हो रहा है, लेकिन विदेश में इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। ब्रह्मांड में सर्वत्र गति है। गति के होने से ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि से शब्द परिलक्षित होते हैं और शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। आज अनेकों भाषाएं प्रचलित है, किंतु इनका काल लिखित है। कोई 100 वर्ष, कोई 500 तो कोई 1000 वर्ष। साथ ही इन भिन्न भिन्न भाषाओं का जब भी जन्म हुआ उस समय अन्य भाषाओं का अस्तित्व था। अतः पूर्व से ही भाषा का ज्ञान होने के कारण एक नई भाषा को जन्म देना अधिक कठिन कार्य नहीं है, किंतु फिर भी साधारण मनुष्य द्वारा साधारण रीति से बिना किसी वैज्ञानिक आधार के निर्माण की गई सभी भाषाओं में भाषागत दोष दिखते हैं। ये सभी भाषाएं पूर्ण शुद्धता, स्पष्टता एवं वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि ये सिर्फ एक दूसरे की बातों को समझने के साधन मात्र के उद्देश्य से बिना किसी सूक्ष्म वैज्ञानिकी चिंतन के बनाई गई। किंतु मनुष्य उत्पत्ति के आरंभिक काल में धरती पर किसी भी भाषा का अस्तित्व न था, तो सोचिए किस प्रकार भाषा का निर्माण संभव हुआ होगा। शब्दों का आधार ध्वनि है, धीरे धीरे स्वाभाविक है। शब्द भी थे किंतु व्यक्तित्व नहीं हुए थे, अर्थात उनका ज्ञान नहीं था। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन की आत्मिक एवं लौकिक उन्नति व विकास में शब्दों के महत्व और शब्दों की अमरता का गंभीर आकलन किया। उन्होंने एकात्र चित्त हो ध्यान पूर्वक बार बार मुख से अलग प्रकार की ध्वनियां उच्चारित की और ये जानने में प्रयासत रहे कि मुख विवर के किस सूक्ष्म अंग से कैसे और कहां से ध्वनि जन्म ले रही है। तत्पश्चात निरंतर अथक प्रयासों के फल स्वरूप उन्होंने परिपूर्ण, पूर्ण शुद्ध, स्पष्ट एवं अनुमान क्षमता से युक्त ध्वनियों को ही भाषा के रूप में चुना। सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियां निकलती है और सूर्य के चारों ओर से 9 भिन्न भिन्न रश्मियों के निकलने से

कुल निकली 36 रश्मियों की ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने और इन 36 रश्मियों के पृथ्वी के 8 वसुओं से टकराने से 72 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है जिनमें संस्कृत के 72 व्यंजन बने। इस प्रकार ब्रह्मांड से निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड के इन ध्वनियों के रहस्य का ज्ञान वेदों से मिलता है। इन ध्वनियों को नासा ने भी स्वीकार किया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनि को उन ध्वनियों का ज्ञान था और उन्हीं ध्वनियों के आधार पर उन्होंने पूर्ण शुद्ध भाषा को अभिव्यक्त किया। अतः प्राचीनतम आर्य भाषा जो ब्रह्मांडीय संगीत थी उसका नाम संस्कृत पड़ा। संस्कृत संत व कृत अर्थात श्वासों से निर्मित अथवा सांसों से बनी एवं स्वयं से कृत जो कि ऋषियों के ध्यान लगाने व परस्पर संपर्क से अभिव्यक्ति हुई। कालांतर में पाणिनि ने नियमित व्याकरण के द्वारा संस्कृत को परिष्कृत एवं सर्वज्ञ प्रयोग में आने योग्य रूप प्रदान किया। पाणिनि व्याकरण ही संस्कृत का प्राचीनतम व सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। दिव्य व देवी गुणों से युक्त अति परिष्कृत परमार्जित सर्वाधिक व्यवस्थित अलंकृत पूर्ण समृद्धि व संपन्न देववाणी संस्कृत मनुष्य के आत्मचिंतन को जागृत करने वाली सात्विकता में वृद्धि बुद्धि व आत्मबल प्रदान करने वाली और संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अन्य सभी भाषाओं में त्रुटि होती है पर इस भाषा में कोई त्रुटि नहीं है। इसके उच्चारण की शुद्धता को इतना सुरक्षित रखा गया कि सहस्त्र वर्षों से लेकर आज तक वैदिक मंत्रों की ध्वनियों व मात्राओं में कोई पाठ भेद नहीं हुआ। संस्कृत की सर्वोत्तम शब्द विन्यास युक्ति के गणित के कंप्यूटर आदि के स्तर पर नासा व अन्य वैज्ञानिक व भाषाविद संस्थाओं ने भी इस भाषा को एकमात्र वैज्ञानिक भाषा मानते हुए उसका अध्ययन आरंभ कराया। देश विदेश में हुए कई शोध के अनुसार संस्कृत मस्तिष्क को काफी तीव्र करती है जिससे अन्य भावना व विषय को समझने में काफी सरलता होती है। देवनागिरी लिपि के प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण व्यक्ति के किसी न किसी ऊर्जा चक्र को सक्रिय करके व्यक्ति की चेतना के स्तर में अभिवृद्धि करता है। वस्तुतः संस्कृत भाषा का प्रत्येक शब्द इस प्रकार से संरचित किया गया है कि उसके स्वर एवं व्यंजनों के मिश्रण का उच्चारण करने पर वह हमारे विशिष्ट ऊर्जा चक्र को प्रभावित करे। प्रत्येक शब्द स्वर एवं व्यंजनों की विशिष्ट संरचना है जिसका प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को शुरू से उच्चारण के साथ साथ बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है जिसका दुरुपयोग एवं सदुपयोग स्वयं पर एवं दूसरे पर प्रभाव डालता है। शब्दों के प्रयोग से ही व्यक्ति का स्वभाव आचरण व्यवहार निर्धारित होता है। उदाहरणार्थ कृष्ण का उच्चारण मणिपूरक चक्र नाभि चक्र को सक्रिय करता है। सो हम उच्चारण दोनों अनाहत एवं मणिपूरक चक्रों को सक्रिय करते हैं। वैदिक मंत्रों को हमारे ऋषियों ने इसी आधार पर विकसित किया है। प्रत्येक मंत्र स्वर एवं व्यंजनों की एक विशिष्ट संरचना है। इसका निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुद्ध उच्चारण ऊर्जा चक्र को सक्रिय करने के साथ साथ मस्तिष्क की चेतना को उच्चकृत करता है। संस्कृत भाषा की सार्थकता इस तरह स्वयं सिद्ध है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सातों स्वर हमें शरीर के सातों ऊर्जा चक्र में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक का उच्चारण संबंधित ऊर्जा चक्र को क्रियाशील करता है। शास्त्रीय राग इस प्रकार से विकसित किए गए हैं जिससे उनका उच्चारण गायन विशिष्ट ऊर्जा चक्र को सक्रिय करके चेतना के स्तर को उच्चकृत करे। प्रत्येक राग मनुष्य की चेतना को विशिष्ट प्रकार से उच्चकृत करने का सूत्र है। इनका सही अभ्यास व्यक्ति को असीमित ऊर्जावान बना देता है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं बल्कि महर्षि पाणिनि महर्षि कात्यायनी महर्षि पतंजलि है। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही

0: विशेषता से योग की क्रियाओं को भाव में समाविष्ट किया है। कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास तथा अन्य कवि भाषा भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह हमारे लिए माता के सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता अखंडता तथा संस्कृति एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत प्रभा नगावत से वार्ता। वार्ता का विषय था संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 7:30 और वक्त हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में काला बाजार फिल्म के गाने के साथ। शैलेंद्र के हैं बोल और एसडी बर्मन की है तर्ज़।

मत वाले काले बादलों का शोर।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूँ।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम लव मैरिज

अगला गाना हमने लिया है मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल और तर्ज ओपी नैयर की।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप आए बाहर आई फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: 25 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दिल एक मंदिर फिल्म से, उसका शीर्षक गीत रफी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन की है तर्ज़।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दिल एक मंदिर फिल्म का गाना। गीतकार थे असर जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इस गाने के साथ ही आज का हम हैं राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल

0: 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजाति समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

है आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका रहता है आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार। कुछ दिल से लेकर एक बार फिर आपसे रूबरू है मीनाक्षी उपाध्याय। करते हैं आगाज एक और नई थीम के साथ। जीवन की हर यात्रा थक कर जहां ठहरती है और जहां पहुंचकर हर थकान एक मीठी मुस्कान में तब्दील हो जाती है, वही पवित्र कोना परिवार कहलाता है। जी हां श्रोताओं, परिवार केवल एक शब्द नहीं, जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। यह वह आंगन है जहां प्रेम की पहली कोंपल फूटती है, संस्कारों की पहली धारा बहती है और रिश्तों की पहली परिभाषा लिखी जाती है। परिवार वह दरख्त है जिसकी जड़ें विश्वास में, तना संस्कारों में, शाखाएं स्नेह में और फल सुख समृद्धि में खिलते हैं, जिसकी छाया में हर सदस्य अपने अस्तित्व को सुरक्षित महसूस करता है। परिवार ईश्वर का सबसे सुंदर वरदान है। यहां शिकायतें भी मुस्कुराती है और नाराजगी भी प्यार बन जाती है। दो पल बैठो अपनों के संग, हर तकलीफ त्योहार बन जाती है। रिश्तों की जड़ें जहां संस्कारों की जमीन में गहरी होती है, वहीं हौसलों की शाखों पर ख्वाबों की कली खिलती है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, परिवार कोई मकान नहीं बल्कि धड़कनों में बसा एक ऐसा घर है जिसकी हर दीवार पर विश्वास लिखा होता है, हर चौखट पर अपनापन मुस्कुराता है, हर आंगन में प्रेम की चिड़िया चहकती है। माँ की दुआओं का आंचल, पिता के विश्वास का आसमान, दादा दादी के अनुभवों की छाव, भाई बहनों की नोक झोंक में छिपा स्नेह, यही तो वह कविता है जिसे जीवन हर दिन गुनगुनाता है। हमारे बचपन की सबसे सशक्त बुनियाद है परिवार। जो दिन परिवार के साथ गुजारे वो जिंदगी है, और जो दिन परिवार के बिना गुजारे वो उम्र है।

श्रोताओं, जीवन एक लंबा सफर है तो परिवार उसका भरोसेमंद हम सफर, वह ठिकाना है जहां थके हुए कदमों को सुकून मिलता है। जिंदगी की राहों में कभी धूप मिलती है, कभी छाव, कभी जीत का उत्सव होता है तो कभी हार की खामोशी, लेकिन हर मोड़ पर कोई बिना शर्त हाथ थाम ले, बिना पूछे आंसू पढ़ ले, बिना कहे मुस्कान लौटा दे, तो वह है परिवार। परिवार में कायदा नहीं व्यवस्था होती है, सूचना नहीं समझ होती है। परिवार में कानून नहीं अनुशासन होता है, और भय नहीं भरोसा होता है।

परिवार महज चंद किरदारों का मजमा नहीं, यह तो वह मुकम्मल नज्म है जिसे वक्त की स्याही और जज्बातों के धागों से बुना जाता है। श्रोताओ, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अक्सर मंजिलों के पीछे भागते भागते उन रिश्तों से दूर हो जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया था। सफलता की ऊंचाइयां तब तक अधूरी है जब तक घर लौटने पर अपनों की मुस्कान आपका इंतजार ना कर रही हो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक की तिजोरी में नहीं परिवार के दिलों में जमा होती है। श्रोताओ, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा रहता है। व्यक्ति भी तभी तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा रहता है। परिवार से अलग होकर हमें आजादी तो मिल जाएगी पर हमारे संस्कार खो जाएंगे। परिवार का साथ यानी गुले गुलजार।

परिवार वह इबादत है जहां प्रेम पूजा है, विश्वास आरती है, त्याग प्रसाद है और अपनापन सबसे पवित्र मंत्र। रिश्ते जब शब्दों से आगे बढ़कर भावनाओं में ढल जाते हैं तब परिवार अपनी सबसे सुंदर तस्वीर बनाता है। तो आइए श्रोताओं, अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को संजोए, बड़ों के अनुभवों को सम्मान दे, छोटों के सपनों को पंख दे और रिश्तों की इस अमूल्य विरासत को प्रेम, विश्वास, अपनापन और मुस्कान से सींचते रहे। श्रोताओं, ये जो जमाने भर की धूप से हमें बचाए रखती है, ये घर की दरों दीवारें नहीं, हमारे अपनों की दुआएं होती है।

श्रोताओं, रिश्तों की डोर जब मोहब्बत से बन जाती है तब जिंदगी किसी गजल की तरह खूबसूरत हो जाती है। घर ईंटों से नहीं एहसासों से बनता है। परिवार नाम है उस रोशनी का जो हर अंधेरे में हमारे साथ चलता है। इसी के साथ कुछ दिल से को अब यहीं विराम देते हैं। आपसे फिर मुखातिब होंगे एक और नई थीम के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुछ दिल से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

सीमा मिश्रा और साथी कलाकारों के गाए इस गीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से, कई महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। और प्रदेश में आज से मॉनसून की गतिविधियों में तेजी की संभावना, चार संभागों में बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र

0: आज से शुरू हो रहा है। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार और इन्हें पारित किए जाने की संभावना है। इससे पहले कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, अर्थपूर्ण भागीदारी और उच्चतम संसदीय परंपराओं के अनुपालन के महत्व पर बल दिया। मॉनसून सत्र से पहले कल ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से मुख्य मुद्दों और रचनात्मक चर्चाओं में भागीदारी करने और संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: गौरतलब है कि मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा। 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में आज राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्ष चुनाव की तैयारियों, ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति से न्यायालय को अवगत कराएंगे। राज्य सरकार की ओर से चुनाव कराने की समय सीमा भी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। इससे पहले उच्च न्यायालय चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी जता चुका है। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने कोटपुतली बहरोड जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोटपुतली पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक में आमजन से संवाद कर यातायात व्यवस्था, अवैध पार्किंग, जाम और बढ़ते अपराध से जुड़े सुझाव और समस्याएं सुनी। इस दौरान नागरिकों ने दिन में पुलिस गश्त बढ़ाने, थाने के डिजिटलीकरण और पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। पुलिस महानिरीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राहुल प्रकाश ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।
2: जनता की तरफ से जो सुझाव आए या जो उनकी समस्याएं थी वो सारी ऐसी थी जिस पर काम करना चाहिए हमें और उसको हल करना चाहिए। उसके लिए बहुत जल्दी काम करके हफ्ते भर के अंदर मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट की है कि इनको वापस सूचित भी करें। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से निवेदन किया था कि साइबर क्राइम जो कि बहुत तेजी से विकराल रूप धारण कर रहा है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनता के बीच में जागरूकता हो। वो लोग जरूर अपने घर में, अपने समाज में, अपने कार्यस्थल पर बात करें कि किस प्रकार से विभिन्न तरीकों से साइबर क्राइम हो रहे हैं जिससे कि लोग उससे बच सकें। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी मैंने सभी से निवेदन किया है कि बहुत जरूरी है कि आपस में जागरूकता हो।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाटू श्याम जी, गिरिराज जी और पुष्कर के ब्रह्म मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए विभिन्न काम किए जा रहे हैं। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राज्य

0: को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। कल जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के साथ शेखावाटी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर और पुष्कर जैसे पर्यटन स्थलों को भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
1: और भी बहुत सारी जगह, इन सब जगहों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और वहाँ पर भी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी और पूरे साल भर सिर्फ वो जो 6 महीने हैं जब टूरिस्ट भी उस समय आते हैं और शादियां भी उस समय होती हैं। इसके अलावा ये भी बहुत ध्यान दें कि और भी सावे बहुत होते हैं गर्मियों में, मानसून में, उनमें भी अगर शादियां होंगी तो ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन राजस्थान बन जाएगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार मिलेगा लोगों को, उनको बार बार बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। ये बात भी
0: कोटा विश्वविद्यालय ने कृषि पर्यटन के क्षेत्र में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे की एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ 5 वर्ष का समझौता किया है। इसके तहत कृषि पर्यटन से जुड़े नए डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इनमें विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, अध्ययन भ्रमण और व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। अलवर जिले के सरिस्का बाग अभयारण्य में वन्य जीवों के लिए सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति व्यवस्था शुरू की गई है। अभयारण्य के डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि सौर ऊर्जा की मदद से जंगल में स्थित वाटर होल तक नियमित पानी पहुंचाया जा रहा है। इससे बाघों और अन्य वन्य जीवों को विशेषकर गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है।
2: सोलर एनर्जी से 2-3 चीज हो रही है। एक तो बोरवेल्स के माध्यम से वाटर होल्स भरे जा रहे हैं, दूसरा जो हमारे इंटीरियर जो चौकी है वहां पर सोलर एनर्जी के माध्यम से उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि हमारा स्टाफ वहां रह पा रहा है। बोरवेल से क्या हो रहा है कि जो वाटर होल्स हैं, जो ये पर्टिकुलरली ये जो गर्मी का 2-3 महीने है ये क्रूशियल है, यहाँ पानी कहीं भी नहीं होता है, तो वो वाटर होल्स जो भरे जा रहे हैं जिससे क्या है कि जो माइग्रेशन जो हो रहा है एनिमल्स का, टाइगर्स का दूर तक माइग्रेशन होता है वो थोड़ा सीमित हो जा रहा है और उससे क्या है कि हमें टाइगर्स देखने को भी ज्यादा मिल रहे हैं, उनका एक जगह उनका लोकेशन भी केंद्रित हो रही है, इसके साथ ही साथ उनको पीने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी भी मिल रहा है।
0: प्रदेश में आज से मॉनसून की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कल से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने और 22 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बरसात हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। माउंट आबू में 2.5 मिलीमीटर और चित्तौड़गढ़ में बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से, कई महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े मामले में आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। और प्रदेश में आज से मॉनसून गतिविधियों में तेजी की संभावना, कई संभागों में बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत कैलाश खेर के गाए गैर फिल्मी गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
0: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
0: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, और सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
0: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों,

0: ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुँचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है।
5: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
4: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
4: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है।
5: भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो, इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
9: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
9: राजकुमार सिद्धार्थ,

0: ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
0: लेकिन सिद्धार्थ,

0: हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
2: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
2: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: ये हंस कैसे बताएगा?
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
2: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम् आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेत केतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है।
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसि कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात, क्या तुम जानते हो
0: हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: पांच। अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो। जी
1: पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
0: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
1: जी
0: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो।
1: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
0: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है।

0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है। तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है, और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.3 MHz पर। सवेरे के 10 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका है सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे लग रहा
1: है? है
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आप

0: हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी, काफी पुराने दिन आपको याद आ गए।
1: जी सही बात है
0: जी। अब रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी, मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
1: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना मुझे, सुनाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ, और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था, लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच में मैंने ही रचाई, लेकिन और कोई कहानियां, मैंने कहा बतेरी है बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है, तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
0: तो मजा था कि सजा थी?
1: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ मजा जरा भी नहीं लगता था, पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
0: सुंदर नाम।
1: लेकिन मुझे लगता है यूनुस उसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
0: जी जी। हाँ
1: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना, मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
0: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
1: करेक्ट,
0: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
1: जी
0: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको,
1: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में, मैंने तो बहुत कहानियां सुनी। तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने न तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी, तो उन्होंने

0: सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए
1: बिल्कुल
0: करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह। फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और
0: और
1: पुणे आ गई।
0: हाँ पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा नाम कहते थे, और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी,
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम परांजपे पे।
1: परांजपे जी एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर।
0: जी, लखनऊ
1: तो
0: यूनिवर्सिटी के भी, और
1: जी
0: इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ हाँ
1: तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओ दिया चलो, ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही
1: जी
0: बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू।
1: जी
0: हाँ उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता आप्टे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ तो उसमें एक किरदार है कोइंड, हाँ
1: मछुआरी।
0: मछुआरी का, हाँ तुलसा नाम की, हाँ बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माँ ने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकनिम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए, रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोळीवाडा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बसता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी। और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोली टाइप का साड़ी पहनती,
1: जी
0: गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनकी, वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और
1: वाह
0: मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा। और स्टैनिस्लावस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: सही
0: है कि
1: सही
0: रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हटके, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
1: हाँ, ये
0: हाँ
1: कमाल की बात है कि आप
0: हाँ
1: बड़ी
0: नहीं
1: शरारती थी,
0: नहीं
1: रंगदार
0: शरारती
1: थी।
0: नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी
1: बस
0: शरारती, लेकिन
1: जरूरत ना
0: मेरी
1: थी।
0: माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम्हें सही की तरह पिटाई करने का। हाँ
1: अरे
0: और
1: बाप रे,
0: मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है वहां पर, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
1: वाह वाह, बड़ा प्यारा।
0: तो हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया। तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं

0: नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई। मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं। और बाकायदा मुहूर्त देखा, और फिर तुलसी बाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे। मतलब तुलसीबाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या करता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह,
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम लिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेकन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब, हाँ, ये तो इतनी भव्यता के साथ, हाँ, शादी की गई
0: जी। और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ, ये भी एक विडंबना, हाँ, की बात, लेकिन है, ये वाला जिक्र, हाँ, आगे की तरफ करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे, हाँ। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है, और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों नहीं,
1: फिल्म, हाँ, में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ, हाँ,
1: मुझे लगता है उसी जज्बात को वो,
0: वाह वाह क्या बात,
1: तो वो सुनाइए, आगे बढ़ा
0: जी
1: बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों को पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: टॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन, स्कॉट और
0: बिल्कुल
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से जो कुछ बचकाना कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पड़ रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी, बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इप्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ानी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे
0: जी।
1: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन शैली का,
1: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
0: बड़ा मजेदार है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैसलाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सिंगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी। और वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता, और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
0: हाँ,
1: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता

0: साधु बना मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे, शायर गाने
1: जी,
0: वाले
1: जी,
0: तो उनको पीने की आदत थी और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनके बुरे तरह वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है। तो वो कहते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो सुरई की नोक अटकती है और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा रही है और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना। तो उसने कहा बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं थोड़ा घमंडीपन लगेगा लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था। ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ।
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है।
1: गजब गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा है वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार
0: जी, देखो वो साथ साथ होता रहा है,
1: कह के सुनाते हैं।
0: हाँ।
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है।
0: हाँ।
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा बनाती है।
0: ये।
1: लेकिन दो बातें जो है वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही है पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है
1: जी।
0: हाँ, अब मैथ्स नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ? और आखिरी महीने जैसा होता है मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था। अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे, कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जा। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला थी डेकन जिमखाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल।
1: हाँ,
0: अब मुझे माँ का एक और ये बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे
1: जी।
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट, और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध

0: भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में। तो माने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म, पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और मिजान से कड़कड़ाट से क्या डरू, है ना, तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया। सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी होते हैं। वो करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं, माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो, तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह। ओहो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी, और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया? मैंने कहा आंटी अब क्या है? कहते नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप, अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी।
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया, जैसे तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रूपए, और मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रूपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया। और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद है शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते हैं, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पूना एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स, गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा, अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की, ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो 1-2 दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी, फिर दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया?
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे, जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था, और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था, तो मैंने फोन किया 199 को, और मैंने कहा हेलो, मुझे गोदी माडगोल करके घर का फोन दे सकती है?
1: वाह वाह वाह।
0: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना? हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ताई, एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
1: बेचारी
0: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है, नाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकॉग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई

0: को पहचाने
1: आवाज से,
0: आवाज से। और ये पहला अनुभव था और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं। जो आनंद वो पहले उसमें था ना, इताई ताई बोलते हैं यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, हाँ, गदी माडगुलकर, हाँ, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी,
0: हाँ,
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: दो आंखें बारह हाथ उन्होंने लिखी थी, ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदी माँ ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम,
0: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ, तो एक नाटक मैंने लिखा पक्षान से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं।

0: जैसे मोर क्या कहते हैं, जो न मजला मनती मोर एक पहा किती तरी थोर, अगर उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आकर वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है हरेक के ऊपर, लिखता है मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ एनीवे, तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुर कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांतर कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुले देशपांडे।
1: अरे वाह वाह,
0: कि सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाशा, पत्ते नगरी, पत्ते नगरी पहले था पक्षांतर कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है तीन नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
1: वाह
0: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है जिनका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें, तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा फला दिन का ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे, एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माय स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सरो की पड़ो, झाली का गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट, तो मैं लिखती गई, मौस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में, और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बदूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
1: वो एक लड़की दिखती,
0: हाँ, वो नीचे दिखती है नेहा,
1: पत्ते
0: हाँ,
1: से फैसला करते हैं कि अच्छा, जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी, हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं, और वो दो बुष्टंडे बिचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
1: बिल्कुल बारी बारी से, फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बदूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बदूर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में, जिस दौर की
0: कौन सा गाना सुनाओगे
1: आपकी पसंद।

0: ले जावे
1: मर जावे ले जावे
2: जकी तो भागे लगे रे लगे रे।

0: तो आपको मालूम है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था, हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का, हाँ, एक शो हुआ फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, इतनी मेहनत की, इतना महीना भर तालीम की, हो गया, हाँ हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में, हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
1: वो तो पूरा एक अलग किस्सा,
0: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
1: जी,
0: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको,
1: हाँ? वो अखबार में विज्ञापन देखा,
0: हाँ, तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो, मैंने कहा लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है तो।
1: अच्छा, ऐसे ही कह दिया।
0: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कैसे, एक महीने का, क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने से। एक महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके वगैरह वगैरह बातें होगी। एनीवे, तो आई ज्वाइंड NSD एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर, और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा एनएसडी में, और वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात है,
0: तो वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब सात जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, ही वॉज अ फैंटेस्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
0: नहीं नहीं नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
1: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए
0: जी, जी।
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया,
1: पत्नी जो होती,
0: हाँ, कालिदास की पत्नी रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी, हाँ। तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ हाँ हाँ करा, उनके आगे अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स,

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहाँ से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था।

0: मैंने एंटीगनी में इजमिनी का रोल किया।
1: वाओ।
0: हाँ, मतलब एंटीगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी,
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी दोनों मेरे क्लास में थे, और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी इज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं, घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा, उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को उसे लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, और ओह रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है, इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी, फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन। हमें बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे, तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए, कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के इसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की, वे पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने, और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति
1: जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

शुरुआती गीत हम सुन रहे हैं आजा मछली फिल्म से राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत।

संगीत हम सुन रहे हैं सिम्बा फिल्म से, राहत फतेह अली खान साहब और साथी कलाकार की आवाज में। रश्मि विराग के बोल हैं, तनिष्क बागची का संगीत।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

फिल्म संगीतकार अंतिम गीत हम सुन रहे हैं सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल हैं विशाल शेखर का संगीत।

सुल्तान फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मॉल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले दो दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। बस थोड़ी ही देर के बाद

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं बहुत सुनहरी सी यादें, और आज याद करने का दिन है गीता दत्त, अभिनेत्री गीता दत्त का, गायिका गीता दत्त का। आज पुण्यतिथि है उनकी। आज ही के दिन हम याद करेंगे अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को और अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है गीता दत्त ने।

0: हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यह गीत, गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आर पार फिल्म का यह गीत, गीता दत्त ने जिसे गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: ओ तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 से गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ सजा हुआ। आज याद करने का दिन है बहुत सारे लोगों का और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। आज उनका जन्म दिवस है तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे। कार्यक्रम यादों की महफिल में

हम सुन रहे थे ससुराल फिल्म का यह गीत जिसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आइए सुनते हैं।

0: कार्यक्रम यादों की महफिल में यह संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रही है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।
6: कौन है

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल

हम सुन रहे थे झुक गया आसमान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में ये गीत।

हम सुन रहे थे सूरज फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम आज याद कर रहे हैं उन्हें भी, आज जिनका जन्मदिवस है, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। आज उनके जन्मदिवस पर उनके लिए कुछ नगमे उन्हीं की फिल्मों से, आइए सुनते हैं।

मासूम फिल्म से हम सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडेकर की आवाज में गुलजार के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ ये गीत। आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया ये गीत।

0: दे।
1: हम सुन रहे थे सुनैना मूवी फिल्म का यह गीत जिसे गाया यशुदास ने रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत इजाजत फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, स्वीकार करें। आप सभी जानते हैं सुरीला सफर में हम सब लेकर आते हैं कुछ बातें, कुछ गीत और कुछ प्यारे से किस्से और कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर जो हम आपस में साझा करते हैं उस समय काल को। इबारत एक लिखी जाती है हमारे द्वारा जिसे हम भेजते हैं सोशल मीडिया पर, और यही जो इबारत है वह हमने भी आज भेजी है और उस इबारत को हम आपके सामने सुनाना चाहते हैं। इबारत है कि चंद सिक्कों की खातिर करोड़ों के रिश्ते छोड़ गया, देखो वो परदेश चला गया और वो परदेसी हो गया। बस इबारत इतनी ही है और इस इबारत को लिखने के बाद हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। हम वो बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हमारे श्रोता ने एक बड़ी प्यारी सी कविता कहें या कुछ चंद पंक्तियां कहें उन्होंने लिखकर भेजी हैं कि नयन भरे नीर मन होता अधीर, जिया में टीस यह समाई है, एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के क्या यही परदेश की कमाई है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है कि एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के क्या यही परदेश की कमाई है। कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, सब बातें हैं। और इन्हीं बातों के बीच में हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पहली बार इतनी छोटी मगर जीवन की सच्चाई को बयां करने वाली, दिल को चीर देने वाली बहुत ही गहन पंक्तियों को साझा किया गया है। रिश्तों की गर्माहट चंद सिक्कों की खनखनाहट के सामने कच्ची दीवार की तरह ढह जाती है। स्वार्थ परायणता और पैसे के पीछे की पागलपंती दौड़ मानवीय एहसासों और संबंधों को निर्लज्जता से मिटा देता है और हमेशा से पैसे ने एक रिश्ते से अधिक अपने को अधिक ताकतवर बनवाया है। जी, किसी हद तक आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की सच्चाई से जुड़ी, सच्चाई से भरी है। जहां रिश्ते नाते सब धन दौलत तराजू में तौले जाते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए इंसान कोई कसर नहीं छोड़ता, अपने ईमान को भी बेच सकता है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने फिल्म सट्टा बाजार का जिक्र किया है यहां पर कि उन्होंने लिखा है कि गुलशन बाबरा ने लिखा हेमंत कुमार का गाया हुआ गीत कुछ कह जाता है कि चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है। जी, आपकी बात भी सही है और इसके साथ आपने एक और दूसरी

फिल्म का भी यहां पर कहा है कि फिल्म पहचान में भी पैसों की पहचान, यहां इंसान की कीमत कोई नहीं, बचके निकले जा इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखकर भेजा है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी इंसान परदेश तो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे फासले सिर्फ शहरों के नहीं रिश्तों के भी हो जाते हैं। सच तो यही कि चंद सिक्के जिंदगी चला सकते हैं, मगर अपनों की आवाज, उनका साथ और उनका अपनापन किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई लालच में अपने अमूल्य पारिवारिक संबंधों, प्रेम और अपनों के साथ कुछ पीछे छोड़ देता है। बेहतर भविष्य और धन कमाने की होड़ में ये व्यक्ति अपने घर आंगन को छोड़ दूसरे देश चला जाता है। त्रासदी यह है कि वह व्यक्ति अपनों के दिल की धड़कन हुआ करता था और दूर जाते ही अपनों के लिए परदेसी हो जाता है। बहुत अच्छी बातें आपने लिखी है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको एक अच्छा सा गीत भी सुनवा दें। और जब हम बात इस परदेसी या परदेशी विषय पर कर रहे हैं, तो ये जो परदेश में जाते हैं, ऐसी कई सारी फिल्में हमारे जेहन में आती हैं। पुरानी फिल्मों में तो कई बार ऐसा होता है कि घर से बेटा कमाने के लिए बाहर चला जाता है। ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में अभी आ रही है, ये प्रश्न है आपके लिए कि ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में आ रही है जिसमें बेटा घर छोड़कर परदेश चला गया पैसे कमाने के लिए। जरा बताइएगा उस फिल्म का नाम। अगर आपके दिमाग में कोई भी फिल्म का नाम आता है तो जरूर से हमारे साथ साझा कीजिए कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिमाग में अभी आ रही है कि बेटा गया है या बेटी गई है परदेश पैसे कमाने के लिए, विवाह करके नहीं, केवल पैसे कमाने के लिए बेटा या बेटी बाहर गए हैं, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस गीत को लिखा किसने है। इसके गीतकार का नाम भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आप सबसे हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस फिल्म के गीतकार, इस गीत के गीतकार हैं हसरत जयपुरी। बिल्कुल सही उत्तर देने के साथ हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि ऐसी कोई फिल्म जो आपके दिमाग में, आपके जेहन में आ रही है, जो फिल्म चली गई है जिसमें बेटा या बेटी बाहर चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं अर्पण फिल्म है। जी बिल्कुल, उसमें एक और फिल्म का नाम कई लोगों ने लिया है जो फिल्म का नाम है नाम। एक और फिल्म है नाम, फिल्म के बारे में कई सारे लोगों ने कहा है। बरसात फिल्म का जिक्र किया है कि यह बरसात फिल्म का गीत है, बिल्कुल सही। जी हमारे एक और श्रोता ने बताया कि स्वदेश फिल्म है जिसमें शाहरुख खान अपने गांव को छोड़कर जाता है। बिल्कुल सही बात है, गांव को छोड़कर जाते हैं, अपनों को छोड़कर जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने और भी कई सारी फिल्मों के नाम दिए हैं, जैसे पूरब पश्चिम, नाम, देश परदेश, ऐसी कई सारी फिल्मों के नाम यहां पर आ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांव में या छोटी जगहों पर जब उन्हें पेट की भूख पूर्ति नहीं कर पाती है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस समय लोग यहां से चले जाते हैं कहीं और। स्वदेश के बारे में फिर से जिक्र हुआ है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, उन्हें फिल्म नाम याद आ रही है जिसमें संजय दत्त पैसा कमाने के लिए भारत से बाहर चले जाते हैं और गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं। देश परदेश में प्राण इंग्लैंड के लंदन शहर में जाते हैं। जी उनकी खोज में देवानंद भी लंदन जाते हैं। जी ऐसी कई फिल्मों के नाम आप सबने बताए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर एक और हमारे श्रोता बड़े अच्छे से लिख रहे हैं कि यह कड़वी सच्चाई है कि कई बार लोग रिश्तों में पैसे और भौतिक सुखों के बदले भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान और अपमान अपनापन के लिए तरसते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि पैसा एक सीमा तक आराम और सुरक्षा दे सकता है, लेकिन यह प्यार, भरोसा, मानसिक शांति नहीं कर ही सकता। लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों में संवाद, अपनापन गायब हो जाने के कारण वे भीतर से अकेले पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही, हमारे कौन श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई और लालच के लिए अमूल्य पारिवारिक संबंधों और अपनों का साथ पीछे छोड़ देता है, धन कमाने के लिए घर आंगन छोड़ देता है, वही बात है, परदेसी हो जाता है। परंतु हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, उन्होंने एक पद्यांश का जिक्र किया है महाकवि सूरदास की रचना का, कि उन्हें भ्रमर गीत की याद आ रही है। जी ये बहुत खूबसूरत भ्रमर गीत है, जब जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से इस बात के बारे में बातें होती हैं कि कृष्ण क्या है, कैसे हैं, कहाँ हैं, तब गोपियां जब उस भ्रमर गीत में अपनी व्यथा को कहती हैं, उस व्यथा को यहां पर इन्होंने लिखा है कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि वदी हमसो हरि आहार चली जात। और इस बात में वह बड़े अच्छे से बता रही हैं कि उद्धव यानी उद्धव दादा उस परदेसी कृष्ण की बातें क्यों कह रहे हो, जो एक बकवाड़े का वादा कर गया था और अब तक एक महीने से अधिक बीत गए हैं और वो अभी तक आया नहीं है। तो यहां पर जब परदेश कोई चला जाता है और परदेश से वापस नहीं आता है, तो वहां पर वो गया क्यों था, इसके पीछे के भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, उन्हीं बातों में से एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वह प्रश्न मैं आपको बस छोड़ देती हूं कि क्या हर बार एक इंसान केवल पैसे कमाने के लिए जाता है? आपके अपनों में से कितने लोग शहर से बाहर गए हैं किसी उपलब्धि के लिए, या देश हित के लिए, या कभी किसी और काम के लिए, बताइएगा जरूर। और इसके साथ मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूं, ये गीत बहुत अच्छा है, बता दीजिए कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और बताइए कि आपके में से अपना कोई गया होगा, हम दूसरे पक्ष से बात कर रहे हैं, देखकर देखिए कि आपके उस ओर से कोई बाहर गया होगा, उसके जाने का कारण क्या था।

हम सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत जो कि फिल्म आवारा में आवारा से लिया गया, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का संगीत है। और हमने आपसे पूछा था कि बता दीजिए इसके गायक, गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लता मंगेशकर। और हम उसमें जोड़ देते हैं उनके साथ गाया साथियों ने। चलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर कोई बाहर जाता है तो आप बताइए, अगर कोई आपकी पहचान का है जो कभी बाहर गया है तो बताइए कैसा क्या हुआ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे अपने तो बहुत लोग विदेश गए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहां रहते हुए नागरिकता मिलने के बाद घर वापस आने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं, पलायन भी जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बेटा कमाने के लिए बाहर गया था, बहुत दिनों तक विदेश में रहा, टिक नहीं सका, वापस आ गया और अब तो बहू भी जाने को तैयार नहीं है। जी अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि फिल्म आप लौट चले में एक लड़का विदेश जाता है, लेकिन वहां सब कुछ मिलने के बाद अंत में वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए कई सारे चीज प्रश्नों के, और इन प्रश्नों में से एक प्रश्न मेरी ओर से आपके लिए आता है कि विचार करते हैं हम सब मिलकर कि जो अपना घर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर सीधे देश छोड़ने की बात करते हैं, जो अपना घर छोड़कर, जो अपना देश छोड़कर बाहर जाते होंगे, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना होता होगा, जल्दी से बताइएगा कि उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। आप ये परेशानियां हमारे साथ साझा कीजिए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, और बता दीजिए इस गीत में को हमने किस फिल्म से चुना है, यानी ये गीत किस फिल्म से है, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और तब तक ये भी बताइए कि जो लोग विदेश जाते हैं उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता होगा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा।

हम सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अर्पण फिल्म का यह गीत है। और हमने आपसे और भी एक बात पूछी थी कि परदेश जाकर कितनी समस्याएं होती होंगी, तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए हैं कि जब परदेश जाते हैं तो अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां जाकर सारे काम उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं। जी, ये बात भी सही है। उसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने ये बात भी बताई कि वहां जाते हैं, वहां मिलता तो सब कुछ है लेकिन अपनापन नहीं मिलता। आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि अपनापन तो नहीं मिलता है। इसके साथ ही कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया कि कई बार विदेश जाते हैं तो दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह उनके देश के नहीं है, तो एक व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति का पहले साथ देगा ना कि आपका, तो ये समस्याएं भी, कुछ इस तरह की समस्याएं भी शायद उनके जीवन में आती होंगी। ये सारी समस्याओं के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हमें लगता है कि उनके जीवन में आती होगी, जिसके बारे में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपनत्व, उसने लिखा है कि उनके परिवार के लोग, बहुत से लोग प्रदेश में हैं लेकिन जब जब वो भारत आते हैं उनमें अपनत्व की कमी का एहसास लगता है। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है जब लोग दूर रहते हैं ना, तो हम और वो एक ही तार पर यानी एक ही बात पर नहीं चल रहे होते हैं, तो कभी कभी जब वो बातें समझ में नहीं आती तो अपनत्व शायद कम लगने लगता होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, बहुत पहले दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए गए थे और असफल रहे, घर से 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर में प्राइवेट नौकरी करके दिन गुजारे, हफ्ते में बार बार घर आना होता था, फिर हम परदेश के का अनुभव क्या बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब बाहर गए थे तो उन्हें सबसे ज्यादा पापा मम्मी और अपने दोस्तों के साथ पौधे पक्षियों की भी बड़ी याद आती थी, और उससे भी अधिक जिस बेटे को यहाँ छोड़कर गए थे। जी, और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 1 बजे की विविध भारती की गीतमाला की भी बड़ी याद आती थी। जी, अब हम उसे सुरीला सफर के रूप में आपको सुनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर बरस भारत से करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग विदेश की यात्रा करते हैं, 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, कुछ काम धंधे के सिलसिले में जाते हैं। जी, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका कोई उनका भाई जो है वो बाहर पढ़ने गया था अमेरिका, और उसके बाद फिर वो वापस आ गया, कुछ कुछ कारण हुए और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम किए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसी विषय को लेकर कि जब जो परदेशी होता है उसकी जिंदगी जो दो दुनिया जो है वो दो में बटी रहती है, एक दुनिया वहां जहां वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है और दूसरा जहां वह लौट कर आना चाहता है। हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख में सबसे ज्यादा अपने घर की कमी महसूस होती है। उसे मालूम है कि मेहनत से किसी अपने की आंखों में खुशी आएगी और परदेशी शरीर से भले दूर हो जाए लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के बीच में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब परदेश जाने वालों की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और परदेश जाने वालों की समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अभी हमको ये बता दीजिए कि अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उस गाने को संगीतबद्ध किसने किया, यानी संगीतकार कौन है। पर इसके साथ एक बात और बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिलता, कभी एक चांस मिले, एक मौका मिले अपने देश से बाहर जाने का, वापस आने का भी चांस है, यानी

आप वापस हार जा रहे हैं तो आप वापस भी आएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों के लिए परदेसी होने का मौका मिले तो आप अपने देश से कहां जाना चाहेंगे, किस जगह पर घूमने जाना चाहेंगे या किस जगह पर जाकर परदेसी बनना चाहेंगे, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि इसके संगीतकार कौन हैं, तो आप सबने सही बताया, इस गीत के संगीतकार राजेश रोशन हैं। और हमने आपसे पूछा कि अगर आप कहीं जाना चाहेंगे, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे उत्तर दिए कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब हमें विदेश नहीं जाना, बहुत दूर है, हाँ अमृतसर, कश्मीर और मुंबई आना है विविध भारती में। जी जरूर, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे कोई परिवार के जन है जो फ्लोरिडा, अमेरिका में और कतर में रहते हैं, तो वो देश वो घूमकर आए हैं, तो ऐसी कोई उनकी ख्वाहिशें ज्यादा दिख नहीं रही हैं। इसके साथ ही कई सारे लोग, कई कहता है इंग्लैंड जाना है, कोई कहता है स्विट्जरलैंड जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कहीं जाना है, सभी को सभी जगह जाकर घूमकर आना है और घूमकर वापस आना है, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक विचार रखते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो वापस आएं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे पति जब छोटे उनके बच्चे छोटे थे, तब वो एनजीसी में बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो वो चले गए, तो बच्चों के साथ सास ससुर देवरनंद के साथ रह गए, उनको भी बहुत तकलीफ हुई, और बच्चों के साथ सबके साथ रहने के बाद भी तकलीफ तो इनको भी हुई। तो उनका कहना है कि बाद में उनके पति वापस आ गए तो घर बड़ा खुशनुमा हो गया। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही आवश्यक बात लिखी, वो लिखते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन की समस्या आती है दीपावली आदि त्योहारों के समय अपने परिवार तक लौटने के लिए। जी हाँ, ये समस्या भी, जब भारत के लोग भारत में ही किसी और शहर में काम करते हैं तो ये समस्या तो आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं विदेश में खाने पीने की समस्या होती है, अमेरिका में 97% लोग मांसाहारी हैं और भारत में शाकाहारी लोग निवास करते हैं, और मांसाहार और शाकाहार की तो समस्या है, उसके साथ एक और समस्या है स्वाद की। हमारा स्वाद अलग है, उनका स्वाद अलग है, हम मसालों भरा भोजन करते हैं और वहां पर वैसा भोजन मिलता नहीं, तो शायद समस्या तो होती है। और हमारे एक श्रोता लिख रही इस चीज के लिए बड़ी सकारात्मक बात लिखी है कि उनकी बेटी जब बाहर गई थी उसे घर की बड़ी याद आती थी, धीरे धीरे नए माहौल में ढल गई, अब छोटी बड़ी समस्या का सामना खुद करती है और आत्मविश्वास भी उसका बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, ये सारी बातें तो चल रही है, लेकिन एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है अभी आपसे बात करते करते, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों को पढ़ते पढ़ते, कि जब भारत के शिक्षित बच्चे विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनका क्या होता होगा, यानी हमारे भारत का क्या नुकसान होता होगा और भारत का क्या लाभ होता होगा, यानी हमारे देश का क्या लाभ या क्या नुकसान हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए इस गीत के साथ कि हमारे देश का जब पढ़ा लिखा बच्चा विदेश जाता है तो हमारे देश का क्या लाभ है और क्या हानि है, जरूर से बताइए। और ये गीत मैं आप सबको सौंप रही हूं और मुझे विश्वास है कि ये गीत तो आप सबकी लिस्ट में पक्का होगा और सबकी पसंद का ये गीत है, सुरेश वाडकर और बेला की आवाज में ये गीत है, समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है, बताइएगा फिल्म कौन सी है।

जी आप सबने सही पहचाना, हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत सुन रहे थे और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप अगर भारत का जो शिक्षित बच्चा है वो अगर विदेश जाता है तो क्या होता है, इसका उत्तर हम आपसे सुनना चाहेंगे, जरूर से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूबसूरत सा बात है कि हमारे श्रोता बता रहे हैं कि वो जब विदेश, वो शाकाहारी हैं विदेश, क्या उन्हें भारत में भी दिक्कत आती है कई बार। अच्छा, अब हम विदेश को छोड़कर जब हम अपने ही देश में आते हैं और अपने गाँव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो जाने के लिए या आप कभी उस जगह पर काम करने के लिए गए होंगे तो कई सारी चीजें भी तो नई नई मिलती है ना, कई सारे रिश्ते मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं, उन सब संस्कृतियों के साथ भी जुड़ जाते हैं। और जो विदेश जाकर रहते हैं वो लोग भी अपने जीवन में बड़ी अलग तरीके से अपनी एक दुनिया सजाते हैं। हाँ, रिश्ते जो अपने रक्त के हैं ये अपने हैं, वो छूट भी जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता आपका छूटा है जो आपको छोड़कर कभी चला गया हो?

हम सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत हरिहरन सुरेश वाडकर विनोद सहगल और केके की आवाज में गुलजार के बोल और विशाल के संगीत के साथ। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के पढ़े लिखे बच्चे जब विदेश जाते हैं तो लाभ होता है हानि होता है, जो भी आपके मन में विचार है वो आप अवश्य रखें। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं कि कई बार विदेशों में गए बच्चे के माँ बाप इतने अकेले हो जाते हैं कि मृत्यु पर अगल बगल के पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता, और जब तक तीन चार दिन बाद फोन करे तब पता पड़ता है, और कई बार वीजा आदि की समस्याओं के कारण भी कई सारी चीजें होती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखता है, रिश्ता कैसा भी हो दर्द बड़ा सहमी होता है, उसे भूलना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमें दूर जाना भी होता है, दूर जाकर भी दिल तो उस इंसान से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि रिश्ते कांच के नहीं होते जो टूट जाए, दिल से जुड़े होते हैं। कितनी सकारात्मक बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शिक्षित बच्चे विदेश जाकर नौकरी करते हैं, वहां की उपलब्धियों से उनका हुनर दिखाई देता है, राष्ट्र और मजबूत होता है, पर अपने देश में केवल नाम की प्रसिद्धि मिलती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने देश में जब काम करते हैं तब आपको लाभ बहुत मिलता है, यहाँ पर रहकर भी कई सारे बच्चों ने बहुत कुछ कमाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जगदलपुर गए थे बस्तर, वहां का कल्चर, वहां का चित्रकूट जलप्रपात, हरे भरे जंगल, हरियाली उनको आज भी याद है, मन मचल जाता है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा आनंद आता है जगह पर, बड़ा अपनापन भी है लोगों में। वैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं हर जगह प्रेम ही मिलता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल विदेश जाने वाले विद्यार्थी वापस आते तो अपने साथ अंग्रेजी मैम लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा सभी नहीं करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी जब उसी ज्ञान को प्रदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो कभी कभी गर्व होता है, उससे अधिक दुख भी होता है कि इसी ज्ञान को भारत माँ को समर्पित करते तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते। मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो 5-6 साल बाद वापस आ गए, क्योंकि वहां उन्हें अपनापन और अपने देश की हर बात याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गए। कितने अच्छे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए वापस आ गए। इसके साथ उन्होंने, हमारे श्रोता लिखते हैं, अपने बच्चों को कहा कि कम कमा कर भी अपने देश में रहकर तरक्की करने की सलाह दी गई है। हमारे श्रोता ने लिखा, भारत का बच्चा विदेश क्यों जाए, इस देश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, जब हमारे देश के बच्चे विदेश जाते हैं तो देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, इससे विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होती है, तकनीकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण और वैश्विक मंच से देश की शाख बढ़ती है, जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं ने, एक ने और वही विवाह वाली बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। मैं जब विद्यालय में पढ़ा करती थी तब मेरे शिक्षक ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि जब आप विदेश जाते हैं तो एक काम करिए, आप विदेश जाइए लेकिन विदेश जाकर वहां कुछ रोज रहकर वापस आ जाइए, क्योंकि वहां पर जो आप सीख कर आएंगे, देख कर आएंगे, वो अपने देश में अगर लगाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, और वो भारत में आकर उस चीज को लगाएगा तो भारत की साख और बढ़ जाएगी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं। हमारे लोग लिखते हैं कि पहले लोग अपने प्रदेश से दूसरे राज्य में कमाने जाते थे तो उन्हें प्रदेश कहा जाता था, और ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारे श्रोता

उनकी भाई की कई ट्रांसफर कई जगह होती है, कई सारी संस्कृति से वो शिक्षा भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सारी बातें हैं कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोग बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो हम उनसे बस यही बात कह सकते हैं कि आप चले तो गए हैं लेकिन आपका देश आपसे बहुत प्यार करता है। इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बताइए।

हम सुन रहे थे ये गीत आप लौट चलें, और हमने आपसे पूछा इसके गायक कलाकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक इस गीत के गायक कलाकार हैं। हमारी श्रोता जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिल को कछोटने वाली बात या कहीं हृदय से रोने वाली बात लिख दी है, जहां पर सच में हर किसी का हृदय द्रवित हो जाएगा। वो लिखते हैं कि जब पहली बार बेटा विदेश जाता है तो माँ का कलेजा मुंह में आ जाता है और माँ को बहुत घबराहट होती है, होती होगी ना, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर भेजने में। हमारे श्रोताओं ने कई चीजें बताई हैं विदेश जाने पर, कि विदेश चले जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, पर कई बार उस ओर से देखें तो उनकी भी मजबूरी होगी जो उन्हें जाना पड़ा। अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाना पड़ता, पर कई बार रोटी उन्हें दूर खींच ले जाती है और कई बार तो वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम और आपने जो चिट्ठियां लिखी होती हैं, उन्हें संदेश भेजे होते हैं, उन्हें प्यार भेजा होता है, वो उनका साथ देता है। हमारे श्रोता बताते हैं उन्होंने ये फिल्म करतारपुर सनम सिनेमा में देखी हुई थी। हमारे श्रोता बताते हैं कि वो नेपाल घूमने जाते थे और दोस्तों को कहते थे कि विदेश गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घूमने तो गए हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, जितने लोग आपसे दूर रहते हैं या जो लोग दूर रहते हैं, दोनों आपस में चिट्ठियां जरूर भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन चिट्ठियां एक बार नहीं, कई सौ बार।

0: चिट्ठी।
1: और इसी के साथ हमारे एक श्रोता ने एक चिट्ठी लिखी है छोटी सी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि देसी बायना सब जग मीठा। यह विद्यापति जी ने कहा है, बिल्कुल अपना देश जहाँ है, जहाँ की मिट्टी वहाँ से खान पान, वहाँ से गोली, और वहाँ अपनापन दुनिया की सारी सुख समृद्धियों से ऊपर है। पर दुनिया कहीं भी बहुत सुख समृद्धि हो, सोने चांदी के पलंग बिछावन है, पर हमें तो अपने भारत की खटिया ही बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। और हम सुन रहे थे नाम फिल्म का ये गीत, पंकज उदास और साथियों ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आज का सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। सदा सुखी रहिए। नमस्कार, प्रणाम।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जो इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बहस जीतना सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना ही असली समझदारी है। कुछ लोग हालात के आगे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं। इंसान अगर अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो जीवन में मिलने वाली असफलताओं को ही अपनी नियति मान ले तो वो निराशा की ऐसी खाई में गिर सकता है जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, बहुत मजबूत होता है वो इंसान।

मजबूत इंसान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करना बेहद जरूरी है। खुद को अनुशासित रखें, चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असल मजबूती है। भीतर से मजबूत और निडर बनने के लिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना आना चाहिए और यही जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है। कुछ बात

महान विचारकों और दार्शनिकों के अनुसार मानसिक मजबूती और दर्द सहने की क्षमता का विकास केवल परिस्थितियों से भागने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। आंतरिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और खुद को अंधेरे में नहीं रखते। साथ ही ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने मूल्यों और नैतिकता के अनुसार सही राह पर चलते हैं। भीतर से मजबूत और दृढ़ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, ऐसे मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

0: दोपहर के 2:15 होने को है। बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: 吗？संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सवा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटेग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटल

0: डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुटको पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440.42 करोड़ रूपये जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्डोवा 3 दशकों से मधुर और

0: मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: अमरीका ने लगातार नौवें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार।

हम सुन रहे थे ये गीत आज और कल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में एक और गीत जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने, नूर देवासी ने इसे लिखा है, विपिन ने इसे संगीतबद्ध किया है। बागी शहजादा फिल्म से ये गीत है।

0: ये गीत हमने सुना गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है फिल्म दिल ही तो है से। आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का है संगीत।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत से सजा हुआ यह गीत, जिसे जो कि है फिल्म मेरे महबूब से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करूं?

0: जाके पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, ब्लफ मास्टर फिल्म से मुकेश की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज हैं चंचल वर्मा। तो चंचल जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार मंजरी, आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। और जब भी हमारी ये जोड़ी साथ में आती है ना, तो बहुत सारे श्रोता इस बात का कमेंट करते हैं कि दो वर्मा बहने या दो वर्मा सखियां साथ में हैं।
1: क्या बात है, देखो
2: तो यूं तो हमारी मुलाकात होती है, लेकिन इस मंच पर आज हम बाकी बहुत दिन के बाद साथ में आए हैं।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इससे पहले भी हम लोग कुछ कुछ गप्पे मार रहे थे, तो उसमें भी बड़ा आनंद ले रहे थे कि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन की ही बातें चल रही थी, है ना। और आज देखो हम लोग व्यंजन की बात करने वाले हैं।
2: बारिश के मौसम कुछ खास व्यंजन बनते हैं
1: जी,
2: इसे चाट पकौड़ी और तली हुई चीजों का एक खास मजा होता है खाने का। लेकिन आज जिन व्यंजन की हम बात करेंगे, ना तो वो चाट पकौड़ी है ना कोई तली हुई चीजें हैं।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन है वो पंजाब के बहुत ऑथेंटिक व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन है, जिन्हें बड़े चाव से बनाया जाता है, खाया जाता है। और जो हमारे सुनने वाले श्रोता पंजाब के आसपास रहते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं, वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे और रेसिपीज हमें लिखकर भेज रहे होंगे।
1: बिल्कुल, और वो भाई व्यंजन भी तो बता देते हैं कि दाल मखनी और पिन्नी के बारे में हम बात करेंगे।
2: एक है ऐसी सब्जी जो खास मौकों पर बनाई जाती है, या पंजाबी घरों में तो आमतौर पर दाल मखनी बनती ही रहती है। और मीठे व्यंजन की बात करें तो हम पिन्नी बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और बारिश के पानी की बचत कैसे की जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
2: हाँ, क्योंकि बारिश का पानी हमें, यानी कि बारिश का मौसम तो होता है सिर्फ 3 महीने के का, कभी कभी 4 महीने भी चलता है, या कहीं कहीं 2 महीने भी रहता है, लेकिन पानी की जरूरत तो पूरे 12 महीने होती है।
1: बिल्कुल,
2: उम्र होती है, और यही पानी होता है जो 3 महीने बरसेगा, लेकिन बाकी के जो और 9 महीने हैं, इसी पानी से हमें काम चलाना है, इसीलिए इसकी बचत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो इसके बारे में हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। और कथा सुधा के अंतर्गत 2 महीने का भाग 3 अंतिम भाग हम सुनाएंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है ये। तो उससे पहले चंचल एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: तो चंचल कितना प्यारा सा ये गीत अभी हम लोगों ने सुना।
1: गृह प्रवेश फिल्म का बहुत सुंदर गीत था और इसके बाद हम सुनने वाले हैं कहानी। तो कथा सुधा के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने का तीसरा और अंतिम भाग हमारी सखियां और सखा सुनेंगे।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है।
5: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ।
4: आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई।
5: 75 रुपलिया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च, मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पड़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी।
4: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे।
3: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी

0: और अंतिम कड़ी।
1: एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमिक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा है कि बहूजी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी मां से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया।
2: क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लें। अब इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को, मगर आपको अकल आई ही कब थी? मैं अपना पर्दा ढांकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी शर्म नहीं, जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो। खामखा मुझे जलील करते रहते हैं बस।
1: दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा,
3: आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का सख्त तकाजा है तो वक्त निकालना पड़ा।
1: रूप कुमारी ने बात बनाई।
2: हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
3: जी
2: जी,
1: गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा,
3: ये घर दीदी इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी।
1: रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुश होकर बोली,
2: पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है।
1: गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला,
3: मुझे तो इस घर में, ऐसे घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ, सुन रहे हैं दीदी, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में, सुन रहे हैं आप दीदी?
2: सुन रही।
3: जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, मैं बहुत अदब करता हूं आपका, आप मेरी दीदी है। हाँ,
1: रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में है, जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए हैं, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया,
3: दीदी आपके लिए मेरी जान।

0: नाजिर है दीदी, आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। कौन हूं? मुख्तार। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। क्या? बेटा, बेटा समझती है मुझे। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं दीदी, किसी से कहना नहीं। वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं। हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हां, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000, देता हूं 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरेग खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है। जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी, 1 मिनट, ये
1: क्या है?
0: थोड़े से रुपए।
1: ये थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। इतने रुपए?
0: दीदी क्या? ये आपके कदमों का सदका है। मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक हैं, उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन, ईमान, सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने फन में माहिर है। काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हां, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी, मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। और मेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूंगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना? ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहां कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग दीदी। अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मैं भी ऐश करूंगा।

0: करूंगा मैं भी, और मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।
1: उमानाथ ने आगे कहा, अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था, कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो तरगीबे कई दिन से अच्छे अच्छे दिलावेज रूप भरकर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी, खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है, रामदुलारी पर उसे रहम आया जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
2: जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शानो शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
1: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
3: सुनो, यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
1: रूप कुमारी ने उसकी तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देखकर जवाब दिया,
2: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
3: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
2: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
3: मगर क्लर्की में ऐश कहां, क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त उठाऊं।
2: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
3: मगर एक बात तो है।
2: क्या?
3: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
2: हाँ, यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
3: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था, मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
2: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
3: हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा।
2: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
3: नहीं, वो तो अपनी कार पर थे।
1: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
2: सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ, ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है, उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
4: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा, किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा,
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15-17-18 इतने मिनट का समय लग जाता है और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल, तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है। बारिश का पानी जो है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं, तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और बारिश के दौरान नदियां, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
0: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भरकर लेकर आते हैं और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना है। तो इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
0: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उन्हें रख दिया जाता था और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते थे।
1: और साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद ले लेती थी,
0: बारिश में भीगने का आनंद भी मिलता था। और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो पाता,
1: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना तो डोर मैट सारे बाहर डाल देते हैं कि जल्दी से पानी से धार से पड़ के धूल निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है और जैव विविधता को सहारा देता है।
0: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पर हम जंगलों की बात करें जहां पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे, उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते हैं।
1: हमने अपने सामने भी देखा है कि मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है।

0: और आग बुझाने और आपातकालीन उपयोग संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
1: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी की हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं महानगरों में जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया, तो बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और ये पानी इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
0: बिल्कुल, और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
1: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है, उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
0: और इसके साथ साथ एक सोख पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपंपों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है और गांव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
1: तो इस बारे में और बात करेंगे लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है। उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात करें कि भू जल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
1: क्या बात है।
0: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी सी बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है। अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
0: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनती हैं, वो एक अलग चीज।

सीमेंट के पाइप द्वारा कुएं उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह, और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है। उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लेकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात
5: व्यंजन की। तो पिन्नी जो है ना पंजाब का जो व्यंजन है ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की बनाई जाती है। वैसे लोग इसे आटा मैदा किसी अन्य आटे से भी बनाते हैं, लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है। तो हम बता दें इसके लिए हमें सामग्री चाहिए धुली उड़द की दाल 500 ग्राम।
1: क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की।
5: बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर आपको स्वाद ज्यादा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले लीजिए। काजू बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इस

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे।

0: उसके बाद पानी को छानकर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे, इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आंच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी बूरा जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दे और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में थोड़ा घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल। और देखो एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मखनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, प्याज डालिए और भूनिए और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए और इसमें दाल, नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबलस्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी से मिलाइए और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम सर्व कीजिए।
0: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर मसल्स ही वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं।
1: जी, तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
0: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली, इसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है, प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
1: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी,
0: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी।
0: बट वहां ज्यादा करके कुछ

0: कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है, क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है
1: जी,
0: लेकिन
1: जी,
0: वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में, काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
1: जी जी।
0: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, डर बना रहता है। ये जरूरी नहीं है, ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होने का डर रहता है। तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
1: जी, बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
0: एब्सोल्युटली कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है,
1: जी हाँ,
0: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी पड़ता है।
1: जी जी।
0: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है
1: जी।
0: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है
1: जी जी।
0: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं। सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: मान लेना कि नहीं अभी इसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत बात है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और

0: मैं जाके यूरिन करके आऊं
1: जी, और सारा फोकस सारा ध्यान उसी पर रहता है
0: एब्सोल्युटली,
1: कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन
0: के और फिर वो डर सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो गई और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है, स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार?
0: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है
1: जी,
0: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है
1: जी।
0: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है। दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
1: जी, जी
0: और उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दो लाल।
1: क्या बात,
0: बाजीराव मस्तानी से
1: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलकर रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है
0: जी।
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी।
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना
0: जी,
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं
0: जी जी।
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड उनकी मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है
0: जी।
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे उसमें कुछ निकलेगा उनको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा
0: इसलिए मत चेकअप कराओ,
1: इसे चेकअप मत करवाओ
0: जी जी।
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो देयर इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है
0: जी।
1: कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं उससे निकल सकता है, लेकिन महत्व का ये हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी।
1: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है
0: जी।
1: और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है। सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं
0: जी।
1: लेकिन एक बात हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है
0: जी।
1: दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी

0: सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं।
1: जी
0: सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सके कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा।
1: जी जी।
0: ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें। आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसा नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डायट्री रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है। ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डायट्री रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, लेकिन सब पेशेंट को डायट्री रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना, वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
1: जी जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
0: ये मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
1: बिल्कुल।
0: एट द सेम टाइम एवरी पथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक, बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर न हो। एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है।
1: जी।
0: बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है।
1: जी।
0: ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है।
1: बिल्कुल।
0: सो इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
1: जी। इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वो ही ज्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
0: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके इनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है, जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट।
1: जी जी।
0: जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिन

0: पेरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है
1: जी, तो उससे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुने
0: जरूर। वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर
1: यहां
0: है?
1: मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल।
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है, उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इम्पॉर्टेंट।
0: जी,
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
0: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा। आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड दैट्स वाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
2: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स exactly, ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
1: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है।
2: जी
1: हाँ। और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है। महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग कि जरूरी है या जरूरी नहीं है और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है। अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है, कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
2: जी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
1: मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है। लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है। उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
2: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए?
1: काफी चीजें

0: लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है। प्लस अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट मिलने लगी है, पहले दवाइयां नहीं थी, अभी दवाइयां से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
1: जी बिल्कुल।
0: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
1: जी, जी।
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
1: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है या लाइलाज?
0: बहुत महत्व की बात आपने कही है।
1: जी
0: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है।
1: जी जी।
0: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है।
1: अच्छा।
0: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
1: जी।
0: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज रहता है तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोन ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है। और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
1: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
0: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन
1: चंचल चितवन।
0: चंचल चितवन
1: बेहतरीन
0: गाना, अच्छा
1: है।
0: गाना है
1: जी। मुकेश की आवाज में भी
0: है, आवाज में लता जी की आवाज में भी है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज
1: सुनेंगे। मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: सो जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर
0: जी,
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन या कभी कभी स्टोन्स वगैरह के किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है
0: जी।
1: सो जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी
0: जी जी,
1: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है जो हफ्ते में दो या तीन बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में दो या तीन बार जाना पड़ता है और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है
0: जी जी।
1: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन
0: जी।
1: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है
0: जी।
1: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज है जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है
0: जी जी।
1: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा

0: मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
1: जी जी
0: दो प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
1: बिल्कुल।
0: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है।
1: जी।
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है।
1: जी जी।
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेथ कहते हैं।
1: जी जी।
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है।
1: जी।
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स

0: बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है।
1: जी।
0: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
1: जी जी।
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन न हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: काफी लोग खाली पढ़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
1: जी जी, जी।
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने एक कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी है। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
1: जी।
0: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है।
1: जी जी।
0: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको। जो लोगों को पता नहीं है लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन यहां दो तीन चीजें हैं। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
1: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर।
0: जी।
1: तो अब डॉक्टर साहब, चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाए, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना।
1: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है। अगेन, राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है
0: जी।
1: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती हैं, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए।
0: जी।
1: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डाउट है, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए। लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है।
0: जी।
1: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो। और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 and 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है।
0: जी, जी।
1: लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। सो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप। आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर गुड हेल्थ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम।
0: जी,
1: थैंक यू वेरी मच।
0: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में

थोड़ी देर में 5:05 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवावाणी। इसके अंतर्गत युवा श्रोता आज सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस पर आज की बात, विश्व शतरंज दिवस पर चर्चा, व्यक्तित्व के विकास में खेलों का महत्व पर चर्चा और साथ ही सुनेंगे गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर और रात 9 बजे हमारे मुंबई केन्द्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से सुनवाए जाएंगे 6:30 पर। उसके बाद जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे हमारे जयपुर केन्द्र से।

सांपची का समय रहेगा चौपाल का। इसके अंतर्गत क्रम में श्रोता आज सुनेंगे चर्चा बातचीत लोक भजन और बाजार भाव। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 7:30 पर। समाचार संध्या आप सुन सकते हैं हमारे

संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात 10 बजे। 10:13 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हिंदी में समाचार सुनाए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात 11 बजे। ये तो था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण और अब एक नजर हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 6:05 पर चिंतन आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। यहीं से 6:10 पर आप सुनेंगे वंदना हमारे स्टूडियो से। 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। खेती ने बात का समय रहेगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 6:50 पर। वातायन का समय रहेगा 7:20 पर। विविध भारती की कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर, सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे मुंबई केंद्र से। समाचार प्रभात आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे। 8:15 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कुछ दिल से प्रोग्राम। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 8:45 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और 11 बजे। एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग में आप सुन सकते हैं 9:30 पर और 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कल शाम 5:05 पर नारीलोक कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा बातचीत और गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे कल शाम 5:30 पर रात 9 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ी आप सुनेंगे 6:15 पर हमारे स्टूडियो से। 7 बजे का समय रहेगा किसान वाणी का। इसके अंतर्गत ग्रामीण श्रोता सुनेंगे चर्चा बातचीत लोक भजन और बाजार भाव। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 7:30 पर। रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश हमारे दिल्ली केंद्र से और उसके बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 11 बजे आप सुनेंगे हिन्दी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये तो था कार्यक्रम विवरण। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी 5 बजे का यह चैनल है। शाम के 5:05 में है अब प्रसिद्ध युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवा वाणी।

कार्यक्रम में वाणी सुन रहे सभी मेरे साथियों को आपके दोस्त शिफाली कलर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं प्रेरक विचार। दोस्तों आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। दोस्तों इसी प्रेरक विचार के साथ आज के कार्यक्रम को हम जारी करते हैं। दोस्तों आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार मानव द्वारा चंद्रमा की सतह पर कदम रखने

0: जो कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ऐतिहासिक उपलब्धियों को याद दिलाता है। दोस्तों, जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है चंद्रमा दिवस? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2021 में इस दिवस की आधिकारिक घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण विज्ञान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और चंद्रमा के सतत और शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में वैश्विक जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, चंद्रमा दिवस को मनाने के पीछे इसके बहुत से महत्व और उद्देश्य है, तो इसी चर्चा में हम इसके महत्व और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग पर चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे, जिसको याद रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इसके वैश्विक सहयोग के बारे में जाने तो यह दिवस चंद्रमा के अन्वेषण में विभिन्न देशों के बीच शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जश्न मनाता है। दोस्तों, इसके सतत खोज के पीछे का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए चंद्रमा के सुरक्षित और जिम्मेदार पूर्ण उपयोग पर जोर देता है, क्योंकि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत से काम आ सकता है। दोस्तों, चंद्रमा दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ चंद्रमा पर भारत की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट जो 2008 में चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए इसने चांद पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का ऐतिहासिक पता लगाया था, और इसके बाद चंद्रयान सेकेंड ने सन 2019 में इसने चंद्रमा की सतह के विस्तृत अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और चंद्रयान तीन जो कि 2023 में भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की एक ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश और चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे हम और भी चर्चा जारी रखेंगे, इससे पहले सुनते हैं गीत व संदेश।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

दोस्तों इस गीत के साथ आइए कार्यक्रम में अगली चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों कार्यक्रम में अगली चर्चा है विश्व शतरंज दिवस। दोस्तों विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 1966 में हुई थी और 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। दोस्तों शतरंज के खेल का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में चतुरंग के रूप में हुई थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य शतरंज के लाभों का प्रसार करना, खिलाड़ियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और बौद्धिक विकास में इस खेल की भूमिका को रेखांकित करना है। दोस्तों इस अवसर पर दुनिया भर में विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन शतरंज प्रतियोगिता, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है और विभिन्न स्कूलों विद्यालयों में इसके महत्व के बारे में बताया जाता है। आजकल तो विद्यालयों में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो शतरंज में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं ताकि आगे जाके उनकी बौद्धिक क्षमता को विकास हो सके। दोस्तों कार्यक्रम में अगली चर्चा जारी रखेंगे, इससे पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों इस गीत के साथ कार्यक्रम में अगली चर्चा को जारी करते हैं। दोस्तों अगली चर्चा है व्यक्तित्व के विकास में खेलों का महत्व। दोस्तों व्यक्तिगत विकास में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक विकास जैसे अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देते हैं। खेल हमें हारने को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना और जीत के निरंतर प्रयास करना सिखाते हैं। दोस्तों खेलों के माध्यम से मतलब कुछ व्यक्तिगत लक्षणों का विकास किया जाता है, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक सतर्कता। दोस्तों नियमित रूप से खेलने से सहन शक्ति, संतुलन और समन्वय में सुधार होता है। यह तनाव कम करके मानसिक शांति प्रदान करता है। दोस्तों अनुशासन और समय प्रबंधन की बात करें तो खेल के कड़े नियम और अभ्यास का समय जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं। इसमें खेलों में टीम वर्क और नेतृत्व भी विकसित होता है, जिसमें खेल में खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, जिससे सहयोग और नेतृत्व जैसे सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। भावनात्मक संतुलन का भी विकास होता है। खेल जीवन की चुनौतियों और विफलताओं का डटकर सामना करने का साहस देते हैं। दोस्तों खेलों का व्यक्तिगत विकास में बहुत ही बड़ा महत्व है, जो आपके व्यक्तित्व का विकास करता है। आप भी अपने बच्चों को और आप स्वयं भी खेलों के प्रति अपनी रुचि विकसित करें। दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम विवरण समाप्त करने का। इजाजत दीजिए आपके दोस्त शुभ कलर को कार्यक्रम विवरण समाप्त करने की। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता युवावाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी 500 का ही चैनल है। 5:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम में आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
2: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने बस कुछ ही पलों में।

सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं धनवान फिल्म के गीत से। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, संगीत तैयार किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

बैंड बाजा बारात। अब सुनिए इस फिल्म का गीत सलीम मर्चेंट, हर्षदीप और साथियों की आवाजों में। संगीत सलीम सुलेमन का, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

0: बख्शी की याद का दिन
1: वो तेरे प्यार का
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में पैसे नहीं चाहिए थे फिल्म देखने को मिलता था फ्री में वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
3: तेरे मेरे सपने। अब आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। नीरज के लिखे इस गीत की धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों

0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती।
4: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से टेली।
5: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
6: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
4: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
7: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
5: विविध भारती पर हर पल है खास।
4: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
8: आज के फनकार।
5: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
8: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
4: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
0: विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए अब जुबिन नौटियाल को सुनते हैं फिल्म तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म में प्रीतम के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
5: एक और आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
0: अब सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में अब सुनिए इरशाद कामिल का लिखा गीत। आवाजें नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम लव आजकल।

अब सुनिए लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को फिल्म पतिता में। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सोहम चक्रवर्ती के गाए गीत हैट्रिक फिल्म से। बोल लिखे हैं आशीष पंडित ने, संगीत प्रीतम का।

0: Kurani.
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी 500 का यह चैनल है। 6:30 होने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। यहीं से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित रही और राज्य में बरसात की गतिविधियां एक बार फिर शुरू। इस सीजन में अब तक करीब 21 फीसदी कम बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में आज पेश किए गए शपथ पत्र के अनुसार प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इस शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने कहा कि इसके बाद सरकार को चुनाव कराने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढ़ा की याचिका पर दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इसके बाद 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 17 अगस्त को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 20 सितंबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव की अधिसूचना 23 सितंबर को जारी होगी और इन्हें 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को लेकर समय सारणी भी अदालत में पेश की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज उन्नति की बैठक ली। मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई इस बैठक से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर में चल रही विकास परियोजनाओं और जनहित के कामों की प्रगति की समीक्षा की। श्री शर्मा ने राजस्थान संपर्क और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर मिली शिकायतों में

0: कई परिवादियों से सीधे बातचीत की। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को हर प्रकरण का जवाबदेही के साथ समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में आमजन को राहत देने के लिए चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने का निर्णय लिया गया। इससे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके अनुसार 21 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रदेश भर में फॉलोअप कैंप लगाए जाएंगे। इनके जरिए लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर लोगों को विभिन्न सेवाओं का फायदा पहुंचाया जाएगा। उदयपुर जिले के कुछ बच्चों को अवैध रूप से तमिलनाडु ले जाते हुए गोवा से बरामद किया गया है। इसके बाद पुलिस और बाल कल्याण समिति की मदद से उन्हें वापस लाया गया। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के नाम पर राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था। मामले में तथाकथित रूप से धर्मांतरण के आरोप भी सामने आए हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के इन कथित मामलों से क्षेत्र का सौहार्द बिगड़ने का भी खतरा है।
1: अवैध तरीके से बच्चों को मानव तस्करी के लिए तमिलनाडु में जाया जा रहा था, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है और उसकी सूचना लगातार आ रही है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कानूवाड़ा में एक FIR हुई जिसमें 11 लोग अरेस्ट हुए, उसमें से एक व्यक्ति नेपाल का है, एक पंजाब का है और बताते हैं कि नेपाल वाले में कोई पाकिस्तानी भी सम्मिलित था। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी 3 लोग थे। ये लोग क्षेत्र में आते हैं, छद्म तरीके से रहते हैं और लोगों में अलगाव पैदा करते हैं।
0: प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज तीर्थ यात्रियों का दल काठमांडू के लिए रवाना हुआ। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर से तीर्थ यात्रियों की इस बस को नई दिल्ली हवाई अड्डे के लिए हरी झंडी दिखाई। ये दल काठमांडू की हवाई यात्रा करेगा और वहां पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन सहित अन्य स्थलों का भ्रमण करेगा। राजधानी जयपुर में इस साल दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले लोक मंथन कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू की गई है। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज बैठक ली। पर्यटन भवन में हुई इस बैठक में लोक मंथन आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान देश विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों की सुरक्षा और अन्य इंतजामों पर भी विचार विमर्श किया गया। मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोक मंथन सांस्कृतिक विविधता, परंपराओं और राष्ट्र चिंतन का महाकुंभ है। इसका 5वां संस्करण 4 से 6 दिसंबर को जयपुर में होने जा रहा है।
2: बहुत कुछ होगा, बहुत सारे विचार भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे एकेडमिशियंस को, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी वो बात भी रख सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला है इससे पहले, लेकिन जो पहले के लोक मंथन हुए हैं उनके माध्यम से उनको पद्मश्री तक मिला है। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक पहचान मिलना, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई लगातार बाधित रही। नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग पर हुए शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई, जिसे बाद में कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के शोरगुल के बीच ही लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य न्यायाधीशों की संख्या की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सक्रिय मॉनसून की तरह संसद का सार्थक सत्र पूरे देश के लिए लाभकारी होता है। प्रधानमंत्री ने पिछले एक महीने की भारत की उपलब्धियों पर गर्व जताया। श्री मोदी ने कहा कि देश में युवाओं को अनुकूल वातावरण मिल रहा है, इससे नवाचार और उद्यमिता को नई गति मिली है।
3: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो सत्य चित्त से भी अपनी आवाज

0: को बुलंद बनाया जा सके। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं।
1: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में बनने वाले सैनिक स्कूल की आज आधारशिला रखी। हाथीखेड़ा में ये राजकीय बालिका सैनिक स्कूल करीब 20 एकड़ क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बनने वाले इस स्कूल में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, खेल मैदान सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। श्री मौके पर देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। इस स्कूल का निर्माण कार्य करीब 15 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। कोटा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब डिजिटल परामर्श व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इन संस्थानों में ई प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इससे मरीजों को अस्पताल में लाइन लगने और कागजी पर्ची बनवाने से मुक्ति मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रोगी को डिजिटल टोकन नंबर दिया जाएगा। ओपीडी में तैनात चिकित्सक बीमारी, जरूरी जांचों और दवाओं का ब्यौरा सीधे ऑनलाइन दर्ज करेंगे, जिससे पूरा विवरण मरीज के आभा हेल्थ कार्ड से जुड़ जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य निदेशक डॉ. जोगाराम ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया गया है। इसके तहत अधिक जोखिम और गंभीर स्थिति वाली प्रसूताओं की देखभाल के लिए विशेष यूनिट शुरू की गई है। इस इकाई में जटिल चिकित्सकीय स्थिति वाली प्रसूताओं की सभी जांचें विशेषज्ञ डॉक्टरों की सतत निगरानी में होगी। इस इकाई में मुख्य जांचों की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। हाड़ौती क्षेत्र के खानपुर, पनवाड़ और सांगोत के किसानों को राहत मिली है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की पहल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भवरासा बांध से हरीशचंद्र सागर परियोजना की नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे धान की फसलों को बचाने की उम्मीद बढ़ गई है। श्री नागर ने बताया कि बारिश की कमी से ये फसलें सूख रही थी, पानी से इन्हें नया जीवन मिला है।
2: लगभग 1100 किसान धान करते हैं, वहाँ नदी के प्रवाह से जो पानी आता है उससे वो धान खाते हैं और वो केवल नहर इस बरसाती नहर है और उसमें इस बार पानी नहीं आने से किसानों ने धान तो उसमें रुपाई कर दी, लेकिन वो जो सूख रही है तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि ये धान अगर हमारी बचाना है तो हमें भौराटा डेम से पानी छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए सिंचाई विभाग को और ये बहुत बड़ी राहत हमारे झालावाड़ क्षेत्र का धान का परिवार क्षेत्र है, हमारा सांगोद का जो बोरिना, अमृतपुरा, किशनपुरा वगैरह की पंचायत है, उन सब किसान को राहत मिलेगी।
1: राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक करीब 21% कम बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार सामान्य 145 मिलीमीटर बरसात के आंकड़े के मुकाबले अब तक 113 मिलीमीटर पानी ही बरसा है। 24 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, वहीं 15 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। सिर्फ बीकानेर और चूरू में ही सामान्य से अधिक पानी बरसा है। हालांकि प्रदेश में एक बार फिर बरसात की गतिविधियों के सक्रिय होने से मानसून का दूसरा चरण शुरू हो गया है। भरतपुर जिले के कई इलाकों में आज झमाझम पानी बरसा। भुसावर, वैर, बयाना और नदवई में जोरदार बरसात हुई और ठंडी हवाएं चली। उधर डीग में भी सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। धौलपुर में भी बीती रात से शुरू हुआ हल्की बरसात का दौर रुक रुक कर आज भी चलता रहा। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही से मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज और कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं 22 और 23 जुलाई से इन संभागों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। इस बीच प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अच्छी बरसात की कामना के लिए लोग आस्था से जुड़ी परंपराएं निभाई जा रही है। इसी कड़ी में डूंगरपुर में आज पारंपरिक जुलूस निकाला गया और लोकगीतों के साथ अच्छी वर्षा की प्रार्थना की गयी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में हाल ही में पदोन्नत हुए अधिकारियों से मुलाकात की। लोकभवन में उन्होंने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस पर श्री बागड़े ने उन्हें बधाई और शुभकामना दी, साथ ही उनसे ईमानदारी, सेवा और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में प्रस्तावित कार्यक्रम चुनाव

0: कार्यक्रम पेश किया। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आएगी। प्रदेश में आम जन को राहत देने के लिए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि बढ़ी। कल से 31 अगस्त तक फॉलोअप कैंप लगेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित रही और राज्य में बरसात की गतिविधियां एक बार फिर शुरू। इस सीजन में अब तक करीब 21% कम बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। पिछले महीने सीकर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, जनकल्याण, पर्यावरण और प्रशासन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सीकर जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि यमुना जल परियोजना का एमओए होना रहा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओए किया गया। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। योजना में हाथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए शेखावटी क्षेत्र, सीकर, चूरू और झुंझुनू तक पानी पहुंचाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शेखावाटी ज्ञान सभा में शिरकत की। कार्यक्रम का विषय शिक्षा, संस्कार और विकसित भारत रहा। श्री बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि नीट 2026 के परिणामों में राजस्थान का प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत उत्कृष्ट रहा है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, फिर भी इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। जिला न्यायाधीश रूपा गुप्ता के निर्देश पर सीकर जिला मुख्यालय के निजी छात्रावासों की जांच के आदेश जारी किए गए। जिला प्रशासन को छात्रावासों के पंजीकरण, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, छात्र सुरक्षा और अन्य निर्धारित मानकों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए 15 जुलाई से स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बैठकें आयोजित कर चिकित्सा अधिकारियों, एएनएम और आशा सहयोगिनियों को प्रत्येक गर्भवती महिला की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की समय पर पहचान कर अलग से निगरानी रखने और सभी जांचों का रिकॉर्ड अद्यतन रखने पर भी जोर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों को आयोजन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाने के लिए प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों ने नर्सरी का भ्रमण किया। उन्हें पौध तैयार करने की प्रक्रिया, पौधरोपण की विधि और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान स्काउट गाइड की नियम, प्रतिज्ञा, ध्वज शिष्टाचार और अन्य विषयों का भी अभ्यास कराया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है। इसके माध्यम से लाभार्थी अपने आवेदन और भुगतान की जानकारी व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के संबंध में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन माध्यम से भी सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन में शैक्षणिक सत्र 2027-2028 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। जिले के कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। विद्यालय प्रशासन के अनुसार चयन परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित होगी। मॉनसून के दौरान संभावित जलभराव की स्थिति को देखते हुए नगर परिषद ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग

0: अनेक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें पंप हाउसों के संचालन, जल निकासी, सड़क मरम्मत, जर्जर भवनों की पहचान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राज्य सरकार हाईकोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव रो प्रस्तावित कार्यक्रम पेश किन्नो। ओबीसी आयोग री रपट 5 अगस्त तय मिलेला। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर री मियाद बधी, काल 31 अगस्त तय फॉलो अप कैंप लगाया जावेला। संसद रा पावर सत्र रा पहला दिन री कार्रवाई में विपक्ष सदस्य रा हंगामा रा कारण अड़चन आई। और राज्य में बिरखा ओजो सरूफी, मौजूदा ऋतु में हाल ताई करीब 21% कम में बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार।

0: समाचार सागर, मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय रा चुनाव रो काम 15 नवंबर ताई पूरो कर लियो जावेला। इबारा में आज राज्य सरकार री ओर राजस्थान हाई कोर्ट में हलफनामो पेश करी चियो। ई पाछे गिरिराज सिंह देवंदा और संयम लोढ़री अर्जी में सुनवाई करता था का हाई कोर्ट रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित री खंडपीठ कहो के ई नियत पाछे सरकार ने चुनाव करावण सारू और बगत नहीं दियो जावेला। राज्य सरकार री ओर महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शपथ पत्र अदालत सामी पेश कीनो। महाधिवक्ता कहो के 5 अगस्त ताई ओबीसी आयोग री रिपोर्ट पेश करती जावेला। वे बतायो के इन पाछे राज्य निर्वाचन आयोग री ओर 17 अगस्त में निकाय चुनाव री अधिसूचना जारी करी जावेला और 20 सितंबर ताई चुनाव करा लिया जावेला। पंचायत चुनाव री अधिसूचना 23 सितंबर में जारी करी जावेला और 15 नवंबर ताई पंचायत चुनाव रो काम पूरो कर लियो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राज उन्नति में जुड़िया कामकाज रो जायजो लेवण सारू अहलकारा सागे मीटिंग की। वे प्रदेश में चल रहा विकास रा काम और जनता रा भला रा काम री प्रगति रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए जायजो लीनो। श्री शर्मा राजस्थान संपर्क पोर्टल और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल माथे शिकायत करण वाला हुई सीधी बातचीत की। मुख्यमंत्री संबंधित अहलकारा ने हर मामला रो जवाबदेही सागे टेम सर निपटारो करण रा हुकम दीना। मीटिंग के दौरान राज्य में जनता रा काम आसानी करावण सारू चलाया जा रहा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां री मियाद बधार 31 अगस्त ताई करण रो फैसलो करी चियो। इन तहत काल 31 अगस्त ताई आखा राज्य में फॉलो अप कैंप लगार मामला निपटाया जावेला। उदयपुर जिला रा कुछ बच्चा ने गैर कानूनी तौर तमिलनाडु ले जावण री भगत गोवा छुड़ाई चिया है। ये पाछे पुलिस और बाल कल्याण समिति री मदद वन में पाछा लाई चिया। आम बच्चा ने भणाई लिखाई रा नाम पर राज्य बाहर ले जावण और कथित तौर हमारा धर्म माय बदलाव री कोशिश री शंका जताई ची है। उदयपुर रा सांसद डॉक्टर मुन्ना लाल रावत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खत लिखकर ई मामला री आला दर्जा री जांच करावण री मांग कीनी है। कागज माए रावत कथित मानव तस्करी रा ई मामला हल्का माए भाईचारा रो माहौल बिगड़वा री शंका जताई।
1: गंभीर तरीके से बच्चों को मानव तस्करी के लिए तमिलनाडु में जाया जा रहा था। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है और इसकी सूचना लगातार आ रही है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कानूवाड़ा में एक एफआईआर हुई जिसमें 11 लोग अरेस्ट हुए, उसमें से एक व्यक्ति नेपाल का है, एक पंजाब का है और बताते हैं कि नेपाल वाले में कोई पाकिस्तानी भी सम्मिलित था। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी 3 लोग थे। ये लोग क्षेत्र में आते हैं, छद्म तरीके से रहते हैं और लोगों में अलगाव पैदा करते हैं।
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज यात्रुओं रो दल नेपाल री राजधानी काठमांडू सारू रवाना भयो। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत जयपुर यात्रुओं री ई बस ने नई दिल्ली हवाई अड्डा सारू रवाना कीनी। ओ दल हवाई जहाज रे जरिए काठमांडू पुगेला जठे पशुपतिनाथ मंदिर रा दर्शन सागे दूजी ठोणा रो दौरो करेला। राजधानी जयपुर में इस साल दिसंबर महीना में लोक मंथन कार्यक्रम रखो जावेला। इनरी तैयारियां रो जायजो लेवण सारू उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर में अहलकारा सागर मीटिंग कीनी। मीटिंग में लोक मंथन आयोजन री रूपरेखा और व्यवस्थावां रा बारा में चर्चा करी ची। इस दौरान देश परदेश आवण वाला नुमाइंदा ने हिफाजत और दूजा इंतजाम रे बारा में विचार करी चियो। ध्यान योग है कि सांस्कृतिक विविधता परंपरावां और राष्ट्र चिंतन रा कार्यक्रम लोक मंथन रो 5वां संस्करण 4-6 दिसंबर ताई जयपुर में फैला।
2: बहुत कुछ होगा, बहुत सारे विचार भी सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे एकेडमिशियंस को, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी वो बात भी रख सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला है इससे पहले, लेकिन जो पहले के लोक मंथन हो रहे हैं उनके माध्यम से उनको पद्मश्री तक मिला है। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक पहचान मिलना, ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होगा।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो।

0: और इसके अलावा 6 बीघा में खजूर भी लगा रखे हैं।
1: इस प्रकार से हम लोग परंपरागत रूप में और जैविक खेती के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं।
2: मौसम राज्य में मौजूद चौमासा ऋतु में हाल तक करीब 21% कम में बरसियो है। हालांकि प्रदेश का कई हल्का में बिरखा ओजो शुरू फेंकी है। भरतपुर जिला रा भुसावर वायर बयानार नदबाई में झमाझम बारिश हुई। डीग माई समारंग में छांटो छिटको भे रियो है। धौलपुर में बीती रात शुरू हुई हल्की बरसात रो दौर रुक रुक कर आज ही चालतो रहो। ये विचे चौकी बरसात री कामना सागर डूंगरपुर में आज पारंपरिक जुलूस निकाली जियो और लोक गीता सागर चोखा में सारू प्रार्थना करी जी। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। राज्य सरकार हाईकोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव रो प्रस्तावित कार्यक्रम पेश कीनो। ओबीसी आयोग री रिपोर्ट 5 अगस्त ताई मिलेला। प्रदेश में शहरी ग्रामीण सेवा शिविर री मियाद बधी। कालो 31 अगस्त ताई फॉलोअप कैंप लगाया जावेला। संसद रा पावस सत्र रा पहला दिन री कार्रवाई में विपक्ष रा सदस्य रा हंगामा रा कारण अड़चन आई। राज्य में बिरखा ओजू शुरू हुई। मौजूदा ऋतु में हाल ताई करीब 21% कम में बरसियो। सागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और
4: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ का आकाशवाणी बांसवाड़ा का नहीं चैनल है। शाम के 7 बजे हैं और प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम चौपाल।

भैया ने छोड़ा दियो वाजी भाई ने राम राम किसान भैया देखो वाडर थी जे है छोड़ा ऊपर में लागी हम जो है के बारिश आवी सके सब भाई किसान भाई भी इंतजार में बैठा था कहीं के कारे पानी आ रहे तो निश्चित इंद्र देवता भी अगर तैयारी करी जा था कहीं लागी हुए किसान भाई देखो बारिश से उठागा एम अपने व्यवस्था है सारी कर ली है खरपतवार नियंत्रण में जो किसान भाई काम कर ही रहे हैं ये भी कर वो ठकू है देखो किसान भाई वातर खेती में रोज करा है अपने के भाई मकी करी है गेहूं करा सोयाबीन करी कपा करो गन्ना करा ये कई प्रकार की फसलें रबी खरीफ जायद ना रूप में अपने करा है पर आज अपने सोरा ऊपर बात करी रहे किसान भाइयों के खेती में हाते हाते आगे सब्जी में खेती है ईवी अगड़े आ समय में आप किसान भाई करी सके देखो किसान भाई कृषि ना विशेषज्ञ मानव ई है कि जुलाई महीने में लगाड़ी थकी कुछ सब्जी है तेजी थकी वधे हैं ने बाजार में भी कई सब्जी भी हैं जो 12 महीने इन्हें मांग रह से एवं किसान भाई भी खेती में हाते सब्जी की खेती ऊपर भी ध्यान आ लेने अपनी आमदनी जो है बढ़ावी सके अरे किसान भाइयों में हमें एक प्रश्न उठेगा कि आना महीने में कई प्रकार की सब्जियां कर भी रही तो देखो फूल गोभी की सब्जी जुलाई में महीने में नर्सरी तैयार करीने अपने खेतों में रोपाई भी करी सको अनुकूलन मौसम मलवा ऊपर आने फसल भी अच्छी था है किसान भाइयों अगर पौधों में सही समय ऊपर देखभाल थी जाए तो बेहतर उत्पादन भी अपने ले सको अमियान एक बंद गोभी आने भी बाजार में मांग बनी थकी रहे है बंद गोभी ये भी सब्जी है जो साल भर साले है आना महीने में खेती करी में पौधन पर्याप्त नमी मिले है जिन्हें थकी अच्छी बढ़वार भी थाए है एक किसान भाई भिंडी की सब्जी भी आप करी सक आ सब्जी लगातार तुड़ाई में लगातार कमाई वाली है अगर आप बार बार आमदनी चाहिए जाओ तो भिंडी की सब्जी आनो सही विकल्प कहवाए है क्योंकि आनी तुड़ाई कई बार थाए है

0: कि किसान भाई बार बार आने बाजार में बिक्री करी सके पैसा ले सके। एक टमाटर की खेती किसान भाई अच्छी देखभाल देखी बढ़िया उत्पादन ले सके। किसान भाई टमाटर की खेती में थोड़ी अधिक देखभाल की जरूरत तो पड़े है, पर सही प्रबंधन अपनावा थकी आ फसल भी अच्छो मुनाफो आली सके। बारिश ना मौसम में पौधा ने फफूंद ने कीट थकी बचाव आवश्यक है। किसान भाई संतुलित खाद ने उर्वरक ने उचित दूरी पर पौधा लगाड़वा थकी उपज में अधिक मिली सके। बैंगन की खेती है किसान भाई, क्योंकि बैंगन भी लंबा समय तक उत्पादन वाले हैं। बैंगन की फसल में सबसे की बड़ी खासियत यह है कि एक बार तैयार थवा बाद लंबा समय तक ही फल आले हैं। तो किसान भाइयों फूल गोभी भिंडी टमाटर बंद गोभी बैंगन आदि सब्जियां करीने किसान भाई खेती में आते आते अपनी आमदनी जो है सुदृढ़ कर सके। पर इना बदले किसान भाई ने एक सलाह सोरा आदि थे कि आलू जरूरी है कि देखो हमेशा प्रमाणित बीजों में चयन करवो पड़ेगा। खेत थकी पानी में निकासी अपने प्रबंधन बराबर करवो पड़ेगा। समय पर कीट ने रोगों थकी बचाव भी करवो ने इन हाथे संतुलित मात्रा में खाद ने उर्वरक नो प्रयोग किसान भाई अगर कर लेगा तो निश्चित रूप से इनमें उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगा ने पैदावार अच्छी थागा। पैदावार अगर अच्छी थेगी तो किसान भाई ने मुनाफो भी अच्छो मिली सके। तो किसान भाइयों आ सब्जियों ने संरक्षित खेती है ये भी आपने कही जुए। किसान भाइयों देखो समासन सीजन चली रही तो पानी में तो कमी चली रही है पानी पड़ी नहीं रही, पर कुछ क्षेत्र में खंड वर्षा भी थी रही है। तो किसान भाइयों आना मौसम में एक तो देखो सारी अभी हरियाली लगे बरसात एटले सारी अभी हरियाली लगे, पर इन हाथ हाथ विडंबना ई है कि बरसात जीवी शुरू थाय है एवं मौसमी बीमारी भी खूब आवी पड़ेगी। एना में आ देखो मलेरिया रोग है खुजली वालों है फोड़ा फूंसी है आई फ्लू है आंखें आवी जाए सर्दी जुकाम है आवा तरह तरह की मौसमी बीमारी है एना थकी लोग पीड़ित थी जाए। तो किसान भाई पासला दाड़ा में डॉक्टर साहब थकी बात करी थी डंगल भाई ने तो आज बात यूज करी रहा अपने विषय चाली रू आप तो किम आज एने डॉक्टर साहब की बात हम के वर्षा ऋतु में अपनी हो सावधानी रखनी। तो सबसे की पहले दवाई ने अपने बात हम पसे बीजी बात कर रहा हूं।
1: नमस्ते सर।
2: हाँ नमस्ते।
1: आपका शुभ नाम सर?
2: मैं डॉक्टर नीरज पंड्या।
1: डॉक्टर नीरज पंड्या जी सर कहाँ से बोल रहे हैं सर?
2: मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद औषधालय कोहाला जिला बांसवाड़ा से हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मिलकर खुशी हुई डॉक्टर साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आजकल देखो ये वर्षा ऋतु जो है धरती पर सुकून लेकर आती है, कई प्रकार के फायदे हम दे जाती है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी अगर जीवन में रख ले तो ये कष्ट वाला मौसम बन जाता है। तो इससे हम कैसे बचाव रखें डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे आपसे।
2: आपको भी नमस्कार और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: जी जी जी,
2: आपने बिल्कुल सही बताया कि धरती पर छाई हरियाली आसमान में छाई घटाएं और वातावरण में मेढक पपीये और मोर की सुरीली आवाजें एक और जहां इस ऋतु में मन को लुभाती है वही इस मौसम में जरा सी भी असावधानी हमें बीमार कर देती है।
1: जी, तो हम कैसे इसे निजात पाएं? क्या कारण है कि वर्षा के मौसम में ये लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, हम बीमार ज्यादा हो जाते हैं?
2: सबसे पहले आते हैं कि इस मौसम में किस तरह बीमारियों का खतरा बढ़ता है, क्यों बढ़ता है और किस तरह हम अपना बचाव कर सकते हैं।
1: जी जी,
2: तो बात करें इस ऋतु में तालाब गंदे नाले कुएं और नदियां प्राय दूषित हो जाती है प्रदूषित हो जाती है और बाढ़ की स्थिति में तो और भी ज्यादा हो जाती है। बस्तियों के आसपास गड्ढों में पानी और कीचड़ इकट्ठा रहता है, ऐसे में मक्खियां और मच्छरों की तेजी से बढ़ोतरी होती है। सांप और बिच्छू की संख्या भी इस मौसम में ज्यादा नजर आती है और ये सब कारण है हमें बीमार पड़ने के।
1: जी जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखो आप की जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर हमारे जो श्रोता है जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और आप जानते हो कि ग्रामीण क्षेत्र का दूर दराज के

0: में हालांकि अभी सुविधाएं तो बड़ी है दवाई की, उनकी पहुंच के लिए हॉस्पिटल वगैरह है, लेकिन फिर भी हमारे जो श्रोता है उनको मद्देनजर रखते हुए क्या उपाय करें, किस हिसाब से बचाव करें कि ताकि इन बीमारियों से वो दूर रहें।
1: हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जैसे हमें ये जरूरी हो जाता है कि किस तरह सावधानियों को रखकर इनसे पहले तो बचाव कर सके और बीमार होने से बच सके, हमें इन बातों पर गौर करने की जरूरत है।
0: जी जी, तो कौन कौन सी सावधानी रखें सर?
1: हाँ, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इस मौसम में पित्त का संचय शरीर में होता है और वात का प्रकोप होता है, यानी वात प्रकोपित होता है, और जो हम खाना खाते हैं उन भोजन के रसों में अम्ल रस की बढ़ोतरी होती है। ये सब प्राकृतिक तरीके से होता है जिससे हमारी पाचन शक्ति बहुत ही कमजोर रहती है और ये एक प्रकृति का ही चक्र है, और इसी वजह से ऋतुजन्य रोग यानी ये मौसमी बीमारियां होती हैं और इन मौसमी बीमारियों में संक्रामक रोग भी हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मैं बताऊं आमाशी सार होता है और रक्त प्रवाहिका जिसे बेसिकली डिसेंट्री बोलते हैं, प्रवाहिका या तेजिस जिसे बोलते हैं, आंत्रशोथ होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जुकाम होता है, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया और कई तरह के चर्म रोग होते हैं, स्किन डिजीज, आई फ्लू, ये सब एक कॉमन बीमारियां हैं जो इस मौसम के अंदर होती है।
0: डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी, बेहतरीन जानकारी आप हमारे श्रोताओं को उपलब्ध करा रहे हैं। हम ये डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि ये जो अभी आपने जो मौसमी बीमारियां आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से बताई हैं, क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में इनका कोई निदान है या कोई सावधानी है कि हम बीमार पड़े ही नहीं ऐसा?
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि वर्षा ऋतु में न जब कई रोग पानी संक्रमित होने से और खाद्य चीजों के प्रदूषित होने से होते हैं, इसलिए पानी की शुद्धता और खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी शुद्धता का हमें ध्यान रखना होगा और ये किसी भी तरह से संक्रमण से मुक्त हो, संक्रमण रहित हो, तो हम मौसम के अंदर बच सकेंगे। जैसे जुकाम होना इस मौसम में सामान्य बात है, ये एक संक्रामक रोग है जो वायरस से फैलता है, इसमें नाक से पानी बहना, छींके आना, सिर दर्द होना या कभी कभी तेज बुखार आ सकता है, और इसमें छोटे छोटे कई तरह की समस्याएं हैं जिससे हम जितनी सावधानी रखेंगे उससे हम बच सकते हैं।
0: अच्छा,
1: और जैसे मैं जुकाम की बात की तो इससे बचने के लिए खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना और ज्यादा बीकार वाली जगहों से जाने से बचना, डॉक्टर से समय पर इलाज करवाना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए।
0: जी जी, मतलब इतनी सावधानियां रखते हुए भी डॉक्टर साहब मान लो किसी को ये आप कह रहे हो सर्दी जुकाम या आई फ्लू वगैरह हो जाए तो क्या हॉस्पिटल में जाए या देसी इलाज के पीछे पड़ा रहे हमारा किसान?
1: श्रोता, यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो सावधानियों की बात कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस जागरूकता की बात कर रहे हैं।
0: जी,
1: अगर हम सामान्य बचाव के उपाय जो घर पे कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, पर स्थिति जब बढ़ती है या कोई ऐसी बीमारी सामने आती है जो हमारे बचाव के बाद भी हो गई है और उसका इलाज जरूरी होता है, तो ऐसे में हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, डॉक्टर की देखरेख में उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
0: अच्छा,
1: मलेरिया है जो इन दिनों में एक सामान्य बात है, घरों और बस्तियों के आसपास अवरुद्ध नालियां होती हैं, गड्ढों में एकत्रित पानी होता है, ये इसका मूल कारण है।
0: जी, जी जी,
1: और इसी पानी में ये मच्छर पनपते हैं, तो इन दिनों के अंदर जो बीमारियां होती हैं, इसमें एक कॉमन बीमारी मैं इसकी चर्चा लोगों के सामने कर रहा हूँ जो भी हमारी श्रोता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब इस मौसम के अंदर कॉमन बात है। अगर ऐसा होता है तो बिना चिकित्सक की सलाह से स्वयं को इलाज नहीं लेना चाहिए, बिना चिकित्सक की सलाह के खुद को इलाज नहीं करना चाहिए, सलाह लेकर के इलाज करना चाहिए। नवयुक्त स्थानों में मच्छर देरों तक छिड़काव कर सकते हैं, रात के सोते समय मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, और भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे और तरह की सुविधा नहीं है तो सोते समय हम सरसों का तेल हल्के से शरीर पर मल सकते हैं, इस सरसों के तेल की गंध से मच्छर नहीं काटेंगे और इस तरह से हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इनसे भी बच सकेंगे।
0: मतलब हमारे जो श्रोता है उनसे निवेदन करें कि भाई अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी अगर आपको है तो आप ना डॉक्टर के सलाह के कोई इलाज न करें और
1: इलाज नहीं, बचाव कर सकते हैं, बचाव के लिए अपने हाथ में है, बाकी जब बीमारी होती है तो डॉक्टर की देखरेख में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और इस मौसम की और बीमारी में मैं प्रकाश डालूंगा कि टाइफाइड और पीलिया ये जैसे वो पूरी साली होते हैं लेकिन इन दिनों में इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है, और ये दोनों बीमारियां भी प्रदूषित पानी पीने से, प्रदूषित दूध, सब्जी, बासी और ठंडा भोजन, सड़ा गला, मक्खियों से दूषित खाद्य सामग्री, इन सबके उपयोग करने से होते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना।

0: जी। और अगर से कोई छोटी मोटी बीमारी हो भी जाए तो डॉक्टर के पास जाके पूरी अपनी संपूर्ण जांच करावे खून वगैरह की।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसके अनुसार निदान डॉक्टर साहब बताए उसके अनुसार ले या फिर इधर झाड़पों के या फिर ये जो लोकल इलाज
1: नहीं, नहीं, स्थानीय नहीं, नहीं, नहीं। हमारे जो सुनने वाले श्रोता है जो सुन रहे हैं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में तो लोगों में जागरूकता है, पर ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार के द्वारा हर जगह की चिकित्सा सुविधा दृढ़ की हुई है। तो आपको किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ है, आपको कोई बीमारी है, तो आपको उस चिकित्सा केंद्र के अंदर जाना चाहिए और जो भी चिकित्सक है उनके समक्ष अपनी बीमारी को प्रस्तुत करना चाहिए और वो जो भी ट्रीटमेंट देंगे उसको ट्रीटमेंट को पूरा लेना चाहिए।
0: जी जी डॉक्टर साहब, इन दिनों ये टाइफाइड और पीलिया जो है उसका खतरा भी ज्यादा रहता है, तो उनसे कैसे निदान?
1: हाँ, टाइफाइड और पीलिया जैसे कि ये पूरे साल होते हैं, पर खास करके इन दिनों में ये प्रदूषण की वजह से जो पानी दूषित होता है, जो भी व्यक्ति अगर इसका ध्यान नहीं रखता है, प्रदूषित दूध सब्जी बाकी ठंडा भोजन इनका इस्तेमाल करता है और मक्खियां से प्रदूषित होता है, तो ये दिनों के अंदर इसकी संभावना ज्यादा रहती है। इसका बचाव हमारे हाथ में है, हम साफ और शुद्ध पानी का उपयोग करें, ताजा और गर्म खाने का उपयोग करें, मक्खियों और अन्य कीटों से कोई भी भोजन सामग्री है उसको संक्रमित होने से बचाएं, और इस तरह से हम खान पान का ध्यान रखेंगे तो जो संक्रमण हमें खाने पीने के माध्यम से लगता है वो नहीं लगेगा और हम स्वस्थ रह पाएंगे।
0: डॉक्टर साहब, ये हाथ धोने वाला नहीं, अपने जैसे कोरोना काल चला था उस समय हाथ धो हाथ साफ करो,
1: बिल्कुल ये
0: उसका भी कोई इसमें प्रभाव है?
1: बिल्कुल, हाथ धोना एक हमारे पर्सनल हाइजीन में आता है, सामान्य स्वस्थ तत्व में आता है। अगर और ये चीज का महत्व हमें छोटी क्लासेस से ही बताया जाता है, तो आज भी सारे स्कूल के अंदर जो भी सरकारी विद्यालय है उसके अंदर हाथ धोने का एक पर्टिकुलर एक दिन मनाया जाता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है, हैंड वॉश डे। तो उसके अंदर यही शिक्षा देने का प्रयत्न होता है कि वो बच्चा उस उम्र से ही सीखे कि हाथ धोने का महत्व क्या है। कई तरह के जो संक्रमण है हमारे हाथ से लगते हैं और मुंह जो खाने पीने की चीजें हम हाथ से ही खाएंगे और मुंह के द्वारा पेट में जाएंगे और इस तरह से कई तरह के संक्रमण लगते हैं, चाहे शरीर में चमड़ी से संबंधित हो या खान पान के द्वारा और बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह बहुत सारे संक्रमण होते हैं जो हाथ नहीं धोने से या सफाई का ध्यान नहीं रखने से होते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि अगर इंसान ये हाथ धोना या हाइजीनिक जो भी आपके जो अगर साफ सफाई का ध्यान रखे तो आदि बीमारियों से तो वैसे ही निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे मैं इन दिनों में चमड़ी की बीमारी की बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा कि त्वचा से संबंधित रोग एक आम बात है बरसात में, जिसमें एक सामान्य रूप से समझे कि खुजली, हालांकि खुजली कई कारणों से होती है, तो मैं एक सामान्य प्रकाश डालूंगा, खुजली है, फोड़ी फुंसी है, ये सब इन दिनों में होते हैं। इनसे बचने के लिए खास करके मैं प्रदूषित पानी से स्नान करने से बचना, भीगे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करें, ये हमारे हाथ में होता है। और खासकर इन दिनों में एक अभी आपने पहले भी जिक्र किया था आई फ्लू का, और अभी पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आई फ्लू इन दिनों में बहुत फैला हुआ है, तो क्या हर बरसात के अंदर इसकी संभावना होती है, उसका कारण यही होता है। बचाव को उपाय है, रोगी को भी मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर कोई आई फ्लू से ग्रस्त रोगी है, कॉमन आयुर्वेद में नेत्राभिषंद बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को खुद को ही ध्यान रखना है कि वो खुद आइसोलेट हो जाए, अलग अपने घर के सदस्यों से दूरी बना के रखे। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी चाहिए कि उस बच्चे को उतने दिनों तक छुट्टी जब तक वो ठीक नहीं होता है या अड़ोस पड़ोस में है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि हम ये बीमारी अपने और लोगों को नहीं फैलाएं, इसके लिए खुद को आइसोलेट करें और वो रोगी खुद अपने आंखों और चेहरों को बार बार छूने से बचे, सफाई का ध्यान रखें, जैसे हल्के गुनगुने पानी से इसकी आंखों की नियमित सफाई करें, काला चश्मा देने,
0: सलाह भी ले सकते
1: हैं। हाँ जी, हाँ सलाह तो लेनी है, तो सारा करना है और इसके बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना है। तो ये जो उपाय है वो हम खुद कर सकते हैं ताकि इस बीमारी को और आगे नहीं फैलाएं और बीमारी अंकुश लगा रहे और तेजी से ठीक हो जाए। ठीक है
0: डॉक्टर नीरज पंड्या जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मन नहीं कर रहा है कि आपसे मैं इन बातों को विराम दूं, लेकिन चलते चलते कि वर्षा ऋतु में क्या खान पान रखे, हमारे ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखे, उनके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसको किस प्रकार से खाने में उपयोग में ले ताकि बीमारियों से बच सके और अपना जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखे।
1: बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि इस मौसम में अन्य मौसम की तुलना में पाचन शक्ति हर इंसान

0: नियम है। इस मौसम में जैसे हमारे आयुर्वेद के अनुसार छह ऋतुएं बताई गई हैं, हर ऋतु के अंदर जो वातपित्त कफ दोष होते हैं उनका संचय प्रकोप और प्रसार तीन स्थितियां बताई हैं। ये प्राकृतिक रूप से होता है, तो उन प्राकृतिक रूप में जो हो रहा है उन चीजों को संभालना हमारे हाथ में है। तो इस मौसम के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि वात का प्रकोप होता है, तो हल्का गर्म और सुपाच्य चीजों का उपयोग करना चाहिए और मौसमी फल और सब्जियां जो इस मौसम के अंदर उपलब्ध हैं उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए और खास करके प्याज लहसुन है और पुदीना इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। ये पाचन प्रणाली के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इन दिनों में हमें पाचन विकार जो होते हैं उससे हमें काफी निजात मिलती है। ताजा और गर्म खाना ही खाना चाहिए।
1: डॉक्टर नरेश पंजाजी साहब आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बेहतरीन जानकारी और सरलतम शब्दों में हमारे श्रोताओं को उपलब्ध कराई। मेरे हिसाब से आपकी जो जानकारी है वो हमारे श्रोता अमल में लाएंगे और इन बीमारियों से निजात पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब। राम राम।
0: राम राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत का है। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन

भगत सब प्यासा।

किसान भाई देखो कितने बढ़िया भजन हिंदू ने बया कार्यक्रम में फिल्म भी पूरा थी दे तो आगे तो वालजी भाई ने आज्ञा आलो कल सोरंग पर फिर नवी जानकारी नहीं आते अपने मलंगा ये आज राम

अभी आप चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा में ही चैनल है। 7:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनबा वाला सगला श्रोताओं ने आपकी बेन तमारे हड़ा को घणो घणो राम राम और अनिता बेन आपने भी राम राम
1: तमा जी आपने भी घना घना राम राम और सुनबा वाला सभी किसान बहन है श्रोताओं ने अनिता का घना घना राम राम सा
0: रामा श्यामा तो आपनी हो चुकी छे और देखो अब बात करना थोड़ी खेती बाड़ी की क्योंकि देखो बरसात को टेम छे और बरसात का दना में अपना जो किसान बहन भाई है वहां अपना खेता में फसल बो चुकी छे और कई जगह तो बरखा भी चुकी बरस रही छे और कई जगह बरखा आई कोई ने और कई जो किसान बहन भाई है वहां की फसल उग भी गई छे और कोई के तो अबारताई बारे नहीं निकली और कोई तो मायूस हो रहा है कि भाई बरखा आ जावे तो ठीक रहे वहां की फसल जो छे वापाची ले ला जावे जो बीज डाली हुए खेता में वो खराब को ना होवे
1: और देखो सा किसान भाई जी हम के बार खेता में अपना किसान भाई मक्का बाजरा सोयाबीन मूंग उड़द तिल कपास जैसी जो फसलें छे वो उगा रखे छे तो थोड़ा थोड़ा वो उग भी आई छे तो ई टाइम पे जो निराई गुड़ाई करवो छे ने वो सबसे बढ़िया रहे छे जहाँ किसान भाई की बुआई ने 20 से 25 दिन होगा छे ने तो वहां के लिए अबार को टाइम जो निराई गुड़ाई करवा को छे वो बहुत ही बढ़िया छे। देखो सा किसान भाई आप भी जानो छे बात ने भाई निराई गुड़ाई करवा से मिट्टी में हल्की नमी होवे जब ही करनी चाहिए जिससे कि उमें जो खरपतवार छे वह अच्छी तरीके से निकल जावे। बारिश के तुरंत बाद जब खेता में पानी न भरे हो और मिट्टी भुरभुरी होवे यो तब करवो सबसे चोखो रूप छे। इसे खरपतवार नष्ट हो जावे छे और माटी में चाहे जो हवा को संचार बढ़े चाहे जिसु फसल की बढ़वार भी चौकी हो गए चाहे
0: बिल्कुल सही बताया आपने और देखो खरपतवार आपने निकाल देगा निनाई गुड़ाई कर देगा तो फसल आपने चौकी रहेगी क्योंकि ये जो खरपतवार है वह जो खाद बीज अपन डालना चाहे उन्हें बेकार करे चाहे और ये जो जो पौधों उगे चाहे उनके पास में खरपतवार उगे चाहे तो उन्हें बढ़वाने देवे तो उससे पौधों कमजोर रहे छे तो इनके तई अपन ने हटा देनी चाहिए और एक और बात छे के जब भी अपन ने नई गुड़ाई को काम करा तो उन टाइम पे यो ध्यान रखा कि ज्यादा पानी तो कोई नहीं खेता में क्योंकि ज्यादा पानी अगर खेता में होगा तो उनमें भी अपन ने दिक्कत होगा छे और छोटा जो कीड़ा घाटा छे वहां को भी अपन ने ध्यान रखना छे क्योंकि ये अभी खेता में थोड़ी हरियाली छागी छे छोटा जो कीड़ा रहे छे वे दिखे कोई नहीं।

0: तो काट लेवे तो उनको भी अपना ध्यान रखना है पूरा पूरा।
1: और देखो साहब जब निराई गुड़ाई करे चाहे तो बरसात को पानी चाहे वो माटी में अच्छी तरह समाव चाहे और नमी भी ज्यादा टाइम तक बनी रहे चाहे। उर्वरका को अगर अपना किसान भाई प्रयोग करे चाहे तो वह भी जड़ा तक आसानी से पहुंच जाओ चाहे। फसल की बढ़वार और उत्पादन और उपज में दोनों में ही चोखो रहे चाहे और उमा वृद्धि होवे चाहे। तो सा किसान भाई ने पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन और दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 45 दिन के पाछे कर लेनी चाहिए जो कि फसल के लिए हर तरीका से ही चोखू मानो जाओ छे।
0: तो बिल्कुल सा आपकी जो बात बताई छे उन बातों को अपना जो किसान बहन भाई है वह पूरा ध्यान रखेला और आपने भी ध्यान रख लो कई बात को
1: गीत को।
0: हाँ आप समझ गया हमारा मन की बात के गीत को आपने ध्यान रखना है कि किसान बहन भाई अपना गीत को इंतजार कर रहा है कि कद गीत की बारी आवे छोड़ को सो माने मीठो सो गीत सुनावा। तो आओ सा सुनायो लोक गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोता गीत के साथ साथ ही अपना महेश भाई भी आगा छे स्टूडियो में डॉक्टर सुनीता गुप्ता जी ने ले तो सा जानकारी की और चाला। और देखो सा डॉक्टर सुनीता गुप्ता जी देवला जानकारी जैव प्रौद्योगिकी को कृषि में कहीं महत्व छे इका बारे में तो आओ सा आपा सगला ही मिलर सुना यह जानकारी।
3: किसान साथियों देखो जानकारी देवा के वास्ते अपने बीच मौजूद है डॉक्टर सुनीता गुप्ता। आप प्रोफेसर है पादप कार्यकी विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप पधारी हैं और आपसे आज जानकारी लेवेगा जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो डॉक्टर सुनीता जी स्वागत है आपको। राम राम।
4: राम राम किसान भाई। राम राम।
3: सबों पहले तो जो को मौका किसान भाई बहनी आना यह बताओ कि जो को जैव प्रौद्योगिकी ई विषय पर बात कर रहे हैं तो वो कहीं है साहब।
4: किसान भाइयों जैव प्रौद्योगिकी एक बेसिक या विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो जीवों और जो जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो छोटे छोटे कण होते हैं जैसे कि जीन होते हैं उनको साइंटिस्ट होते हैं उसको यूज कर करके किस तरह से उनसे विभिन्न उत्पाद तैयार कर लेते हैं और किस तरह से ये सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं या समाज कल्याण के लिए हितकारी होते हैं। तो ये जैव प्रौद्योगिकी की एक बेसिक साइंस की जो है ब्रांच है जिसमें सभी शाखाओं जैसे बॉटनी है जूलॉजी है केमिस्ट्री है और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग है इनका सभी का सम्मिलन होता है।
3: जी साहब ये तो हो परिचय। और आप खेती किसानी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब यह बताओ कि जो जैव प्रौद्योगिकी है इको कृषि में क्या इतिहास रही है।
4: जैव प्रौद्योगिकी की जो का इतिहास जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन समय में जो लोग थे इसका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे खमीर के रूप में ब्रेड और शराब बनाने के रूप में करते थे लेकिन जो इसकी विधिवत शुरुआत हुई है वो 20वीं सदी के अंत में हुई थी जब डीएनए की संरचना को हमने जान लिया था और जीन ट्रांसफर की जो तकनीक है उनको हमने विकसित कर लिया था। सबसे पहले 1983 में जो है ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं उनका परीक्षण किया गया और सन 2014 में पहला ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट आया था जिसको कि हम जानते हैं टमाटर का फ्लेवर सेवर टमाटर। और इसकी जो क्वालिटी क्या होती है कि ये एक जेनेटिकली या जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट है और इसमें जो शेल्फ लाइफ है मतलब इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सबसे पहले अमेरिका की मॉन्सेंटो कंपनी ने दिया था उसके बाद भारत में 2002 में बीटी कपास आया था तो तब से ही ये जो है इसका जो है प्रचलन चालू है जैव प्रौद्योगिकी का और अभी तक इसकी शुरुआत जो शुरू प्राचीन समय से चली आ रही है वो अभी तक कायम है।
3: डॉक्टर साहब ये जो कि जीएम फसल है या कहीं हुआ है और इसका लाभ के ही।
4: किसान भाई आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि जीएम फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कि

0: किसी अन्य स्रोत से, चाहे हम उसको बैक्टीरिया से लें या किसी अन्य प्लांट से लें, किसी अन्य जीव से लें, उनके जीनों को हम जो कि किसी वांछित करेक्टर्स के लिए, वांछित गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीएम फसल का जो एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है बीटी कपास, और जिसमें एक जीवाणु होता है बेसिलस थुरिंजेसिस, उसमें जो स्थित जो जीन होता है उसके द्वारा बीटी कपास को कीटरोधी बनाया जाता है, और ये आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो है जीएम क्रॉप है। इसके अलावा कुछ सूखा रोधी किस्में होती हैं, कुछ लवण सहनशील किस्में भी इस तरह से जीएम क्रॉप्स के रूप में विकसित की जा चुकी हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो जैव प्रौद्योगिकी है एक द्वारा कौन कौन सी फसलें विकसित करी गई?
0: देखो, जैव प्रौद्योगिकी के लिए कुछ किस्में विकसित कर ली गई हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण है इसका है बीटी कपास। जैसे अभी मैंने इसमें भी बताया था कि जो बीटी कपास होती है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसमें क्या होता है कि कपास में एक पिंक बॉल वर्म जो होता है वो कीड़ा अटैक करता है और जिससे इस फसल को नुकसान होता है। तो इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस फसल में जो क्राइजीन होता है, जो बैक्टीरिया होता है जीन उत्पन्न करता है जिसको कि हम क्राइजीन कहते हैं, उसके द्वारा इस फसल को, जब ये लार्वा या जो पिंक बॉल वर्म इस फसल को खाता है तो उसके ये जो प्रोटीन है वो उसके ग्लट में जाकर के और उसको नुकसान पहुंचाता है, और जिससे जो इस फसल को है कीटरोधी बनाया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण है जीएम फसल का वो है गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी है, और इसमें जो चावल है इसमें सबसे अच्छा है कि ये न्यूट्रिटिव है, इसमें विटामिन ए की बहुत ज्यादा मात्रा होती है जिससे जो कुपोषण की समस्या उससे निजात मिल सके, और इसका जो चावल का जो रंग होता है वो सुनहरा होता है, इसी वजह से इसका नाम गोल्डन राइस रखा गया है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है जीएम मक्का, और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, और इसमें भी ये जो क्रॉप है ये सूखे के प्रति सहिष्णु है, तो जहां पर क्लाइमेट चेंज होता है या जहां वर्षा की कमी होती है वहां पर इस फसल को उगा करके अच्छी इनकम किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जो कि खाद्य सुरक्षा की बात आवे है तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा के खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करी जा सके?
0: बिल्कुल, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। आज हम जानते हैं कि जो हमारी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और जो फूड की कमी होती जा रही है, तो ये जीएम फसलें उस सुरक्षा की दृष्टि से काफी कारगर सिद्ध हो रही है। जैसे कि बीटी कपास, अब बीटी कपास के रूप में यदि हम देखें तो ये जो होती है कीटरोधी किस्में, इसके साथ साथ इसके उपयोग से क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स में या इंसेक्टिसाइड में जो किसान जो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो खर्च कर देते हैं उससे उसको निजात मिल सकती है, और दूसरा जो कीटनाशकों के उपयोग से जो पर्यावरण में जो असंतुलन आता है, जो पर्यावरण में गिरावट आती है या पर्यावरण के जो संतुलन है वो नहीं रह पाता, तो इसके उपयोग से इससे भी हमें बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो उदाहरण के लिए यदि हम बताएं कि किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, तो जो इकरी सेट है जो कि हैदराबाद में है, उसने चने की सूखे के प्रति सहनशील, मूंगफली की भी एक किस्म दी है जो कि पर्ण रोग के प्रति प्रतिरोधी है, बाजरा की ऐसी किस्में तैयार कर ली है कि जिनमें आयरन और जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कि जो है खाद्य सुरक्षा के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हमें मिल सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जगह किसान भाइयों के लिए आप बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, तो किसानों के लिए कई लाभ आएगा?
0: देखो किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और कीट व रोग प्रतिरोधक फसलें मिलती हैं, जो कि अभी हमने बता ही चुकी हूँ। इससे जो होती है इनकी जो फसलों को उगाने की जो उत्पादन लागत होती है वो भी कम हो जाती है, और जब उत्पादन लागत कम हो जाती है तो किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा जो इन फसलों के प्रयोग से जो हम हानिकारक कीटों के प्रयोग से बच जाते हैं, तो इससे हम पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी भी विकसित कर लेते हैं या हम अपने पर्यावरण को भी अनुकूल बना देते हैं। तो जैसे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमने बीटी कपास की बात करी, और इसके अलावा जो अभी हमने गोल्डन राइस की बात करी कि जिसके उपयोग से या जो गोल्डन राइस जो किस्म पैदा की गई है उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, तो इससे जो पोषक तत्वों में या जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो खराब मौसम के लिए कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कई बार उच्च तापमान की वजह से भी जो है फसलों को नुकसान हो जाता है। इन सभी खराब मौसम, सूखा और अत्यधिक तापमान को सहनशील करने वाली फसलें भी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित कर ली गई है और इसकी वजह से ही जो है किसान जो है इसका लाभ अपनी

0: खेती में कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जो अपना खेत हुए बिकमाए, जो खेत की मिट्टी हुए वह फसल उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, तो मृदा की जो उपजाऊपन क्षमता है बिना बढ़ावा के वास्ते भी जो है जैव प्रौद्योगिकी सहायक हो सके की?
0: बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जो मृदा की जो उर्वरता है वो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। देखो, अब किसी भी फसल को बढ़ने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम माइक्रोबियल जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये मृदा सुधार का एक बहुत बड़ा पहलू है। तो जो हमारे कुछ ये जो चने वाली फसलें होती हैं, या जिनको कहना चाहिए जो पल्स क्रॉप होती है, उनके जो जड़ों में क्या होते हैं, माइक्रोबियल कवक और नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने वाले जीवाणु होते हैं, और जिससे कि है इस तरह से हम अपने जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को है या नाइट्रोजन की

0: इस तरह से हम अपने जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को है या नाइट्रोजन की आपूर्ति है उसको हम इन जीवाणुओं द्वारा कम कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह के फसलों में से जो जीन को निकाल करके ये अनाज वाली फसलों में भी ट्रांसफर किया गया है, जिससे इन ये फसलें भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके या जो सहसंबंध बना सके पौधों में और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके।
1: तो डॉक्टर साहब, ईको द्वारा जो है बायो पेस्टिसाइड्स को निर्माण की प्रकार से हुआ है?
0: जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं ये जो अपने सिंथेटिक पेस्टिसाइड होते हैं उनका एक विकल्प होता है। जो हम सिंथेटिक बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ये वातावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं और साथ ही किसानों को इसकी उच्च रेट भी देनी पड़ती है। इसके विकल्प के रूप में जो पौधों में या जीवों में और जंतुओं में जो इस तरह के रसायन होते हैं उनको जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको एक्सट्रैक्ट कर करके और बायो पेस्टिसाइड का निर्माण किया जाता है, जिसमें जो फसल है जैसे नीम है, पायरेथ्रम है, कपास है और तंबाकू है आदि जो वनस्पति, ये जो बायो पेस्टिसाइड है ये कम खर्चीले भी होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से इनको किसानों को इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि इनका जो खर्चा आता है वो भी कम आता है और ये फसलों में बहुत अधिक कारगर साबित हो रहे हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत चौकी देखो आप बात बताया जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, किसान का जो खेत की मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता बढ़ावा में भी सहायक है और खाद्य सुरक्षा ने भी सुनिश्चित करे है। तो इसके अलावा अब चलता चलता जो मां का किसान भाई ही बाने ये विषय पर अपनी तरफ से और कोई बात ये चर्चा में रहेगी तो आप अपनी तरफ से खेबो चाहो तो आप बता सको।
0: देखिए किसान भाइयों, जैव प्रौद्योगिकी वैसे एक क्या कहते हैं महंगी तकनीक है, किसानों के लिए महंगी तकनीक है, लेकिन यदि हम इस तकनीक का उपयोग करके अपने जो फसल है यदि उसमें वैज्ञानिक उसमें वांछित गुणों का उपयोग कर लें और अपने वातावरण अपने जो समस्याएं आ रही हैं चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो, चाहे न्यूट्रिशन की हो, चाहे और दूसरी समस्याएं हो जो कीट रोधी हो, इस तरह की यदि हम फसलें तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जैव प्रौद्योगिकी है वो बहुत अच्छी तकनीक है। और मैं तो चाहूंगी कि किसानों को भी इस तकनीक से रूबरू होना चाहिए, साथ ही इन जो इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको अपनाना चाहिए।
1: तो किसान भैया, आई जानकारी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में और आ जानकारी आपने दी डॉक्टर सुनीता गुप्ता जो कि प्रोफेसर हैं पादप कार्यकी विभाग राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से आप आई और किसान भैया ने अतिरिक्त चौकी और उपयोगी जानकारी दी। इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दिलाई महेश भाई ने जैव प्रौद्योगिकी का कृषि कार्य में महत्व डॉक्टर सुनीता गुप्ता से। और देखो यह बातों को आप ध्यान में रखेगा और अपना जो करसान वीण भाई है जाने भी जो कार्यक्रम सुनो है वे भी पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेला और एक कोशिश आपने भी कर लेनी चाहिए जी। काहे की
5: आप बताओ भाई की
4: गीत की
5: भाई, मैं तो था की बात पहले ही समझ जाऊ भाई था के साथ रहता रहता कहीं मन तो ताको मन देखता है ताको चेहरो देखता है पता चल जाए था की काई इच्छा से तो आओ सा आप सरला ही मिलर सुनाइयो
4: लोगीत।

0: वासा वाह भाई, गीत तो भरे ही चोको सुनाया। काला बादल या जद आवे, और देखो सा काला बादल आवे तो बरसात होवे तो मन आप ही अपना आप ही सबको झूम झूम जावे छे।
1: बिल्कुल झूमे है और काला बादल अपने यहाँ आवाज छा भी रहा है। बरखा जरूर आवेली और जो भी उदास है वहां का मन खुश कर देगा। और बरखा बहुत ही मन भावे है और अपन तो बरखा को आनंद भी ले वहाँ।
0: बिल्कुल सा। और देखो सा अब कार्यक्रम को भगत भी पूरे हो चालो छे।
1: बिल्कुल सा। तो घड़ी के अपन देखता हूँ वहाँ खेती बाड़ी कार्यक्रम ने यही पूरा करवा के लिए लेवा
0: आज्ञा देव अनिता ने और
1: तमाधाड़ा ने
0: चालान करा
1: राम राम सा।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। इसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु

उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय कर्ज सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDDM द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया। इसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जी राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से MPP के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिमग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जी राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉ सतीश पूनिया और प्रकाश बड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मानसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन घोष,
स्वप्न साधन बोस, रंगा साई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के

साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 बजे पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो सभापति हरवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को उसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय में सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप
संसद में हुई आज की कार्यवाही के

0: समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:15 में है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: सनम भी वफाइस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर और सत्यम की थी, गीत सावन कुमार का और संगीत महेश किशोर का था।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।

0: संगीत फिल्म का ये गीत था अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में, गीत संतोष आनंद का और संगीत आनंद मिलिंद का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज सुनी। अभी आप सुन रहे थे कोयला फिल्म का गीत, गीत इंदिवर का था और संगीत राजेश रोशन का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर

आमिर चैनल है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। अब से थोड़ी ही देर में इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो जहां आज हमारे साथ होगा फुटबॉल का जुनून, फीफा का समापन और क्रिकेट के मैदान पर भारत ने क्या पाया और क्या खोया। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का विजेता बना, फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री को फीफा विश्व कप की गोल्डन बॉल और फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे एक दिवसीय मैच में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन आज से चीन में शुरू। मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। और पीवी सिंधु कल से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करती दिखेंगी। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं फीफा के साथ, जिसका शानदार समापन कर न्यू जर्सी स्टेडियम में हो गया है एक शानदार और रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का विजेता बन गया है। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। स्पेन के लिए सब्स्टिट्यूट फोरान टोरोस ने उनकी जीत के हीरो बने, जिन्होंने अतिरिक्त समय में मैच का निर्णायक गोल करते हुए टीम को 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया।
1: In 2026, the champions of the world are Spain. Viva España! The best team has won it, and the best player the world has ever known leaves in tears. This time, the party belongs to someone else. This is a Spanish summer night.
2: New York, New Jersey Stadium में FIFA विश्व कप के फाइनल मुकाबले में तनाव और रोमांच अपने शिखर पर नजर आया। इस कड़े मुकाबले के निर्धारित 90वें मिनट बिना किसी गोल के खत्म होने के बाद टोरेस ने आखिरकार 106वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल दागा। इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने निको विलियम्स के हेडर से मिली गेंद को नियंत्रित किया और फिर बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाकर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज से बचाते हुए एक बेहतरीन गोल किया। इसी के साथ स्पेन की टीम ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। स्पेन ने लंबे समय तक बॉल पर अपना कब्जा बनाए रखा और पूरे फाइनल में बेहतर मौके बनाए, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने बार बार स्पेनिश टीम के हमलों को नाकाम किया। वही अर्जेंटीना साफ सुथरे मौके बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आई और कप्तान लियोनेल मेसी को स्पेन के अनुशासित डिफेंस ने काफी हद तक रोके रखा। मौजूदा चैंपियन को नॉर्मल टाइम के स्टॉपेज टाइम में बड़ा झटका लगा। मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस को दूसरा येलो कार्ड दिखाया गया, जिससे एक्स्ट्रा टाइम के लिए अर्जेंटीना की टीम में 10 खिलाड़ी रह गए। मुकाबले में 106वें मिनट में आए टोरेस के गोल के बाद स्पेन ने दबाव बनाना जारी रखा। इस बीच टीम को लगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली है, लेकिन गोल से पहले फाउल होने के कारण उस प्रयास को अमान्य करार दिया गया। हालांकि लुइस डे ला फुएंते की टीम ने संयम बनाए रखा और आसानी से मैच के आखिरी पलों को बिताते हुए अर्जेंटीना के विश्व चैंपियन के दौर को खत्म कर दिया। ये जीत स्पेन के लिए एक शानदार टूर्नामेंट का समापन थी। ये टीम पूरे टूर्नामेंट में अजय रही और साल 2010 की अपनी ऐतिहासिक सफलता के बाद दूसरा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। परहतनाथ, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो स्पेन एक ऐसी टीम बनकर उभरी जिसने अपने मजबूत डिफेंस को अपनी ताकत बनाया। विश्व कप के 8 मुकाबलों में महज एक गोल खाते हुए ये टीम फुटबॉल की नई विश्व विजेता बन गई है। मैदान पर तनाव दिखा दोनों टीमों के बीच, दोनों टीम के फैंस के बीच, लेकिन रोमांच का मीटर हमेशा हाई ही नजर आया। स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री फीफा विश्व कप 2026 के

0: सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने और उन्हें गोल्डन बॉल हासिल हुई, जबकि फ्रांस के किलियान एम्बापे ने लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट अपने नाम करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो आइए सुनते हैं अपने खेल से मैदान पर करिश्मा दिखाने वाले इन दोनों खिलाड़ियों पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
1: स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री को पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार खेल के लिए विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। रॉड्री फीफा विश्व कप 2026 की गोल्डन बॉल अपने नाम करने में सफल रहे। ये पुरस्कार पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाता है। रॉड्री ने स्पेन के लिए सभी 8 मैच खेले और सबसे अधिक सफल पास किए, सबसे अधिक दूरी तय की और खेल में सबसे ज्यादा बार गेंद को छुआ। उनकी सटीक पासिंग, डिफेंस और अटैक के बीच बेहतरीन तालमेल ने स्पेन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। फाइनल में रॉड्री ने 105 में से 101 पास सही किए, 80% ड्यूल्स जीते और 2 गोल करने के मौके बनाए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपने डिफेंडर्स की मदद करने में उनकी समझदारी भरी भूमिका के कारण ही स्पेन ने 8 मैचों में सिर्फ 1 गोल खाया। वे फुटबॉल इतिहास में विश्व कप, UEFA चैंपियंस लीग और बेलिन डियोर जीतने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले फ्रांस के कप्तान किलियान एम्बापे ने गोल्डन बूट अपने नाम किया। एम्बापे ने इस विश्व कप में 10 गोल और 4 असिस्ट किए। एम्बापे ने लगातार दूसरे विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया। वे ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी 8 गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में फ्रांस के कप्तान एम्बापे 2 गोल करने के साथ ही मेसी से आगे निकल गए थे। फीफा विश्व कप के इतिहास में भी सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड एम्बापे के नाम ही दर्ज हो गया है। वे इस मेगा इवेंट में कुल 22 गोल कर चुके हैं, जबकि स्टार खिलाड़ी मेसी 21 गोल के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कल दुनिया ने देखा इन नए सितारों को उभरते हुए और अब फुटबॉल के बाद रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। इंग्लैंड ने भारत को कल लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर तीसरे एक दिवसीय और निर्णायक मुकाबले में 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। इस हाई स्कोरिंग मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट गंवाकर 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी। और इस मैच पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। ये पूरा मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मैच रहा, कोशिश भारत ने आखिरी हद तक की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कृपया एक पूरे मैच के इस स्कोर कार्ड पर नजर डालें।
2: जी शक्ति, जब इंग्लैंड बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो उन्होंने शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें अहम भूमिका निभाई उनके ओपनर बेन डकेट और जेकब बैथल ने। बची खुची कसर वहां जो रूट ने आकर पूरी कर दी, जब उन्होंने 48 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली और अंतिम ओवरों में जॉस बटलर ने 13 गेंदों पर 41 रन की विस्फोटक पारी खेलकर इंग्लैंड को एक विशालकाय लक्ष्य तक पहुंचा दिया। जवाब में भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर काफी निगाहें थी। भारत का टॉप ऑर्डर जो है उसमें रोहित शर्मा के ऊपर काफी सवाल उठ रहे थे कि वो किस तरीके से खेलेंगे, क्या उनका बैटिंग अप्रोच होगा, लेकिन उन्होंने सभी अपने आलोचकों के मुंह बंद करते हुए 110 गेंदों पर 138 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 77 और विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेली। मिडिल ऑर्डर जो है भारत का वो फेल होता नजर आया और भारत को कोलैप्स का सामना करना पड़ा और 27 रन से हार मिली भारत को। जेकब बैथल जो रहे उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, जिन्होंने 91 रन की पारी खेली और रोहित शर्मा का विकेट झटका था।
0: जी बिल्कुल, आपने रोहित शर्मा की बात की, ये सुनते हैं कि रोहित शर्मा ने श्रृंखला में टीम के प्रदर्शन के बारे में क्या कहा।
3: Little disappointed with the result because I thought we were playing really good cricket. You know how we started in Birmingham, we played some really good cricket. We fell a little short at Cardiff with the bat, actually not enough score on the board. And then here again there was a massive total to chase. We tried everything we could with the bat, but again fell 20-25 runs short with the bat.
0: रोहित की जो कल की पारी थी वो 137 रन की, आपने बात की, विव रिचर्ड्स के रिकॉर्ड की बराबरी और लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरा सबसे बड़ा एक दिवसीय स्कोर, पहला भी कल ही बना जो इंग्लैंड के खिलाड़ी के बल्ले से आया। लंबे समय से कई अटकलें थी, कई सवाल थे, कितना सार्थक उनकी इस पारी ने जवाब दिया उन सवालों का।
2: देखिए एक बात तो तय है कि रोहित ने अपने बल्ले से जवाब दिया है, उन्होंने इस पारी में अपने 17 चौके और 5 छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए कल मैदान पर उतरे तो उनकी बैटिंग में एक अलग किस्म का कंट्रोल नजर आ रहा था। उन्होंने अपने जो शॉट्स हैं वो इधर उधर नहीं मारे और सीधे बल्ले से खेलकर गेंद को बेहतर तरीके से बाउंड्री के पार पहुंचाया। और जो रोहित शर्मा रहे उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि विजिटिंग कंट्रीज में उन्होंने सबसे ज्यादा शतक बना लिए हैं। इंग्लैंड में उनके 8 शतक हो चुके हैं।

0: सबसे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था जो यूएई में उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा रोहित शर्मा जो है सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं किस ओपनर बल्लेबाज के तौर पर। अभी डेविड वार्नर से वो पीछे हैं जिन्होंने 49 शतक लगाए हैं।
1: जी बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने खुद अपनी पारी के बारे में क्या कहा, इंग्लैंड की धरती पर उन्हें खेलना कितना पसंद है, आइए उनके मुंह से सुनते हैं।
2: I love playing in England, there's no doubt about it. The atmosphere, ground, the pitches. You know, when you turn up here to play any sort of format, it challenges you in different ways. That's what, as a cricketer, I want to be challenged all the time. I had my time in the middle, I enjoyed it.
1: भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी हिटमैन की पारी की प्रशंसा की है, आइए सुनते हैं शुभमन गिल ने क्या कहा।
3: जिस तरीके से रोहित भाई ने ये इनिंग पेस की बहुत ही शानदार था। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ऑन द नॉर्थ साइड एंड वाचिंग इन, हमारी जो बातचीत थी मोस्टली ये हो रही थी अगर विकेट हाथ में रखेंगे तो ही चांस बनेगा इतने बड़े स्कोर को चेस करने का। पावर प्ले में हम बात कर रहे थे कि मारने के लिए जाए ना जाए, बट देखा कि नई बॉल से मारना उतना ईजी नहीं है। एंड आई थिंक जैसे उन्होंने अपनी इनिंग पेस की और फिर जैसे एक्सेलरेट किया, आई थिंक जब वो 60-70 के पास पहुंचे तो बहुत ही शानदार।
1: हालांकि लक्ष्य इतना बड़ा था कि आप कितने भी रन स्कोर बोर्ड पे बनाते जाइए, आपके लिए जो नीड्स वाला कॉलम है, जो और बनाने वाला कॉलम है, वो हमेशा उससे बड़ा नजर आता है। जिस तरह की ये पूरा दौरा भारत के लिए गुजरा, पहले आयरलैंड से 2-0 की हार, फिर इंग्लैंड से T20 श्रृंखला में हार, कुछ पॉजिटिव क्या भारतीय टीम अपनी 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों में यहां से लेकर के आ पाई है।
0: शक्ति, 2027 की तैयारियों की बात करें अगर तो भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह से फॉर्म में आ गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिटनेस, कमिटमेंट और फॉर्म पर जो चर्चा हो रही थी वो लगभग अब खत्म हो चुकी है। भारत की कई कमियां भी सामने आई हैं जिसके चलते अब भारत की ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उनको किन किन चीजों पर काम करना है। जैसे मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स जो है वो लगातार हो रहा है, 4-5-6 नंबर में बदलाव किए जा रहे हैं जिससे एक दृढ़ता नजर नहीं आ रही है। बुमराह के अलावा भी टीम को कुछ एक्सपीरियंस बॉलर्स की जरूरत है जिसके चलते वो एक प्रेशर बना पाए सामने वाली टीम पर और स्पिन पर और भरोसा जो है जताना होगा।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि काफी कुछ सीख लेके ये युवा टीम जो है, एक कॉम्बिनेशन है युवा और एक्सपीरियंस टीम का, वो आगे बढ़ेगा और अपनी तैयारियों को और धार देता हुआ नजर आएगा। और अब रुख करते हैं शूटिंग रेंज का। भारत ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप राइफल, पिस्टल, शॉटगन के लिए 36 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। आज से 29 जुलाई तक चीन के हांगझाऊ में चलने वाली इस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे।
4: भारतीय दल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल शामिल हैं, जबकि महिलाओं में आशी चौकसे, विदर्शा के विनोद और सिप्त कौर सामरा हिस्सा लेंगी। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि, संयम और ईशा सिंह तथा पुरुषों में केदार लिंग बी, उचाग नवे, कमलजीत और आकाश भारद्वाज शामिल हैं। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोवत तथा पुरुषों में अनीश भनवाला, ओंकार सिंह और भावेश शेखावत को चुना गया है। शॉटगन इवेंट्स में उदावीर सिंह जाजी, भवनीश मेंदीरत्ता और विवान कपूर पुरुषों के ट्रैप इवेंट में हिस्सा लेंगे। महिलाओं में प्रगति दुबे, कीर्ति गुप्ता और राजेश्वरी कुमारी हिस्सा लेंगे। पुरुषों के स्कीट टीम में गुरजोत सिंह खंगुरा, परमपाल सिंह गुरोन और अभय सिंह सेखो शामिल हैं, जबकि गनीमत सेखो, दर्शना राठौर और यशस्वी राठौर महिलाओं की टीम का हिस्सा हैं। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, शाहू तुषार माने और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, वहीं महिलाओं में इला वैनिल, वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और साक्षी सुनील पडेकर भाग लेंगे। इसके अलावा भारत 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम और ट्रैप मिक्स टीम इवेंट्स में भी टीम उतारेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब रुक करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां जापान ओपन में जीत हासिल करने के बाद पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करती नजर आएंगी। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा भी भारतीय दल का हिस्सा हैं और उन्नति हुड्डा कल पीवी सिंधु से ही अपना पहला राउंड ऑफ 32 का मैच खेलने उतरेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स की बात की जाए तो वहां पर लक्ष्य सेन युवा आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम में है। पुरुष डबल्स में सबकी नजर एमआर अर्जुन और हरिहरन हंसाकर्णन पर होने वाली है, क्योंकि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है उसको जापान ओपन के बीच में ही कुछ चोट के कारण हटना पड़ा था। और अपनी ऐतिहासिक जीत पर पीवी सिंधु ने खुशी भी व्यक्त की है कि वो आगे इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए नजर

0: और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैंप कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की सभी खबरों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसी स्वेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत

0: मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत

0: की मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्डोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवे एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मुर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को केर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे। एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे। देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं। इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: इससे पहले केर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की।

0: वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
1: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गो के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मांगने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले दो दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: चरस फिल्म के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, साथ दिया है आनंद बख्शी ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आदमी और इंसान। अब सुनिए इस फिल्म का गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है रवि ने।

लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम शागिर्द।

अंतिम पेशकश फिल्म है दूसरा आदमी। स्वर दे रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, और साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी भी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। कोई मेरे दिल से पूछे कि तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये शेर सुनते ही आपको चचा गालिब याद आए होंगे और आप सोच रहे होंगे आज के फनकार हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के किरदार को छोटे पर्दे पर जिन्होंने बखूबी निभाया था वो हैं आज के फनकार।
1: बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का।
0: रोबीला चेहरा, दमदार एक्टिंग, हर किरदार में खूब फबने वाले अदाकार हैं आज के फनकार। जी हाँ, आज के फनकार हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह।

नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। अभिनय के इस प्रतिष्ठित संस्थान से

अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों की सूची में समानांतर और मुख्य धारा की फिल्मों का अनूठा सम्मिलन देखने को मिलता है।

मेनस्ट्रीम सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत हुई 1980 में आई फिल्म हम पांच से। फिल्म भले ही कमर्शियल थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई पैरेलल सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर भी थे, लेकिन नसीर के दमदार अभिनय ने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया।

1987 में गुलजार की इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत, इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर कमर्शियल एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया।

बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों में नसीर अपनी कामयाबी की कहानी आगे बढ़ाते जा रहे थे तो उनकी अदाकारी के चर्चे सात समंदर पार तक पहुंच गए। सन 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी उन्होंने शानदार काम किया। देश से लेकर परदेश तक नसीरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है, लेकिन नसीर अपनी काबिलियत को खुशकिस्मती का नाम देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतने मौके मिले, लेकिन मैं कमर्शियल फिल्मों से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। सन 2008 में आई अ वेडनेसडे ने नसीर की

कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया तो इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने बार बार ये साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती।

0: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर की जोरदार एक्टिंग ने पब्लिक को खूब एंटरटेन किया है। वाकई नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स को ना तो देश की सरहदें बांध सकती हैं, ना उम्र की जंजीरें थाम सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा छोटे पर्दे पर मिर्जा गालिब नाम से एक धारावाहिक आता था जिसने किताबों में बंद मिर्जा गालिब को जिंदा कर दिया था। उस धारावाहिक ने छोटे पर्दे पर गालिब की ऐसी तस्वीर उभारी जो सिनेमाई कम हकीकत ज्यादा लगी थी, और ये सब मुमकिन हुआ था उस चेहरे के बलबूते पर जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह।
1: ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम, ये दुनिया बाजीचा-ए-अतफाल है दुनिया मेरे आगे।

दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। सन 1988 में धारावाहिक बनाने से पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में बतौर गालिब उनकी दिली इच्छा थी संजीव कुमार को लेने की। नसीर साहब ने इस बारे में बताते हुए कहा, मैंने गुलजार भाई को चिट्ठी लिखी और अपने फोटोग्राफ्स भेजे। मैंने लिखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस फिल्म में तो आपको मुझे लेना चाहिए था। उन्हीं दिनों की बात है, अभिनेता संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ गया था और सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब के दिल में उस रोल के लिए अमिताभ के नाम का ख्याल आया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी और आखिरकार गालिब पर फिल्म बनाने का प्लान ही ठंडे बस्ते में पड़ गया। शायद उस वक्त गुलजार को भी नहीं मालूम होगा कि इस किरदार पर तो तकदीर ने किसी और का ही नाम लिख दिया है। कई साल बाद गुलजार साहब ने एक दिन नसीर को फोन लगाया। नसीर ने बताया, एक दिन मुझे गुलजार भाई का फोन आया कि सीरियल में काम करोगे। मैंने पूछा कौन सा सीरियल, तो उन्होंने बताया गालिब पर है। मैंने बिना कुछ सोचे

फौरन हाँ कर दिया। ये नसीर की पहली ख्वाहिश थी जो देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर हुई और उन्होंने गालिब के किरदार को यादगार बना दिया।

नसीर साहब की एक और दिली ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश थी गांधी के रोल को करने की। कहते हैं जब रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म बना रहे थे तो वो उसके लिए ऑडिशन भी देने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और रोल मिला बेन किंग्सले को। नसीर की तमन्ना अधूरी ही रह गई। सन 1982 में गांधी के रिलीज होने के 18 साल बाद कमल हासन ने बनाई थी फिल्म हे राम, जिसने नसीर साहब की दूसरी अधूरी तमन्ना को पूरा कर दिया। इस फिल्म में उन्हें गांधी का किरदार निभाने का मौका मिला। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर उनके टक्कर का कोई दूसरा एक्टर बॉलीवुड में नहीं है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ थी स्मिता पाटिल। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने खूब सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हूँ, अर्धसत्य, कथा वगैरह वगैरह कई आर्ट फिल्में की। आइए सुनते हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों के कुछ गाने। ये फिल्म है

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 1987 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2003 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1969 में फिल्म स्पर्श, सन 1984 फिल्म पार, सन 2006 फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला नसीरुद्दीन शाह को।

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1981 में आई फिल्म आक्रोश के लिए फिल्मफेयर मिला नसीरुद्दीन शाह को। सन 1982 फिल्म चक्र, सन 1984 में फिल्म मासूम के लिए मिला फिल्मफेयर पुरस्कार। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, आलेख और प्रस्तुति शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: ओशनबर्न 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशीय बांसुरी का यह चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा।
1: और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय

0: लिए रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। यह मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन दो सप्ताह के भीतर किया जाए और गठन के तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। अदालत ने समिति को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बोझ साझा करने के तरीके और व्यवस्था की सिफारिशें करने का निर्देश भी दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं, जबकि पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से देंगे। मोदी जी ने प्राण प्रेरण लेवाते हुए देश को कहा था कि विकसित भारत बनाने के लिए संकट करेंगे विकसित भारत बनाने के। दूसरा प्रण लेवाते हुए गुलामी को मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि युवा सबसे प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारे मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा इसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च जीवन बनाने के लिए, जन उपयोगी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है, और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी ये सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
3: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें।

0: आप लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाश।

अभी आप संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी भवन सुनने का नहीं चैनल है। 10:13 हुए हैं। अब पेश नजर है फिल्म संगीत।

मत सताओ हमें, हम सताए हुए हैं, अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं। खिलौना समझ के न खेलो हमसे, हम भी उसे खुदा के बनाए हुए हैं। इसी के साथ फिल्म संगीत का आगाज करते हैं।

और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में जब जब फूल खिले फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है, ये जिंदगी है साहब, यहां जबरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है।

जब जब फूल खिले स्वयं का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना और अब सुनते हैं आप आई बहार आई फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में बोल आनंद बख्शी के हैं धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर।

आप आई बाहर आई। इस फिल्म का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुना। अब आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देश।

निर्देशन में किशोर कुमार की आवाज में अमर प्रेम फिल्म से। सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, दर्द होता है पर आवाज नहीं आती। अजीब लोग हैं इस जमाने में दोस्त, कोई भूल नहीं पाता और किसी को याद नहीं आती।

अमर प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना और आइए अब सुनते हैं अगला गीत चोर मचाए शोर फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की है, गीत संगीत रविन्द्र जैन का है। जख्म तो आज भी ताजा है बस वो निशान चला गया, इश्क तो आज भी बेपनाह है बस वो इंसान चला गया।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना। अब सुनते हैं अगली पेशकश बेमिसाल फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की है, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन आर डी बर्मन की है। मोहब्बत सिखा कर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया। दुनिया में किसको हम अपना कहें, जो अपना था वही बेवफा हो गया।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में बेमिसाल फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में शराबी फिल्म का गीत। नगमा निगार है अनजान और मौसीकी बप्पी लहरी की है। जरा सी गलतफहमी पर न छोड़ो किसी अपने का दामन, क्योंकि जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में शराबी फिल्म का गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं अगला गीत मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। बोल अनजान के हैं, धुन कल्याण जी आनंद जी की है। दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते, आंखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे हैं कितने गिना नहीं सकते।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना। अब सुनते हैं फिल्म संगीत की अगली पेशकश काली घटा फिल्म से। आवाज मोहम्मद रफी की है, बोल आनंद बख्शी के हैं और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। न जिंदगी मिली न वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली, झूठी

और अब सुनते हैं फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में बेताब फिल्म से। मेहमान गान है आनंद बख्शी और मौसीकी राहुल देव बर्मन की है। दर्द है दिल में पर उसका एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो पास नहीं होता। बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में और वो कहते हैं कि इस तरह प्यार नहीं।

0: अभी आपने लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में बेटा फिल्म का गीत सुना। दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता। उसने दर्द इतना दिया कि सहा न गया, उसकी आदत थी इसलिए रहा न गया। आज भी रोती हूँ उसे दूर से देख के, लेकिन दर्द देने वाले से ये कहा न गया।
1: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम गोइंग 103.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं और हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।